सच संयम करणी हरक हर किरत हर कीरत सच संयम करणी हर कीरत हर सेती लिवलाई आपे शब्द सच साखी आपे जिन ज्योति ज्योत मलाई देही काची कौन कौन बजाए गुरमुख अमृत पाई।

गरड शब्द मुख पाया हम मैं बिखर मारी मान रे हम मैं मोह दुख पारी ए भाव जद जगत न

निष्कप निर्भो निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैवम गुर प्रसाद। जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उसी।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला पहला। दुख दारू सुख रोग भया जा सुख ताम न हुई।

राग गुजरी महला चौथा हर के जन सतगुर सतपुरखा बिनो करो गुर पास हम किरे किरम सतगुर शरणाई।

जिन हर हर सरदा हर प्यास, हर हर नाम मिले तृप्ता सह, मिल संगत गुण परगास। जिन हर हर हर रस नाम न पाया, ते भागहीन जम पास। जो सतगुर शरण संगत नहीं आए, त्रिग जीवे त्रिग जीवास। जिन हर जन सतगुर संगत पाई, तिन तुर मस्तक लिखिया लिखास। धन धन सत संगत जित हर रस।

पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हरे अगमा अगम अपारा सब त्याव है सब त्याव है तुद जी।

से धन जिन हर ध्याया जी, जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी, भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी,

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबियो बात बेनती चौपाई हमरी करो हाथ दै रक्षा पूर्ण हुए चित की इच्छा तब चरणन मन रहे हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सबै तुम काबहु आप हाथ दै मोहे बचावहु सुखी बसै मोरो परिवारा सेवक सिख सबै कर।

तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ, जेते बदन श्रेष्ठ सब धार है, आप अपनी बूझ उचार है, तुम सब

असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख मूर्ख अंध घोर, असंख चोर हराम खोर, असंख अमर कर जाहे जोर, असंख गाल वड हत्या कमाहे, असंख पापी पाप कर जाहे, असंख कूड़े आर कूड़े फिराहे, असंख मलेश मल भख खाहे,

हे वाहेगुरु, मैं तेरे तू एक बारे भी कुर्बान नहीं हो सदा, मैं आ नहीं करूंगा जो तुद पावे, जेड़ी तेनू चंगे लगदे कर्म तेरा हुक्म है ना, मैं तेरे हुक्म विच चलूंगा। मैनू ए पता, मैनू ज्ञान है कि तू सदा हमेशा रहने वाला है, तू सदा सलामत निरंकार, जिन्हें ओदा हुक्म मन्या है ओदे ए लोक सुखी है, पर लोक सुहेले नानक हार प्रभ आपे मिलते। सतगुरु साहब जी ने कृपा करके संखेप इलाही प्रमाण की विचार कराई, विचारा करद्या बहुत भुला हुई, सतगुरु साहब जी गुरु की संगत अणजाण बच्चा जान के माफ करो, हुई भुला की माफी करो, कृपा बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।

तैसा दृष्टाना जिसते उपजे तिसमाए सुमाए वे सुख निदान उन्हु बने आए आपस को आप दिन मान नानक प्रभु जने को जानो। श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभु बिरथा जानन हार क्या कैसे मरण उदरी है नानक तिस भलिहार। अष्टपदी टूटी गाडन हार गोपाल सर्व जी आया पे प्रतपाल सगल की चिंता जिस मन माहे तिसते बिरथा कोई नाहे हे मन मेरे सुधा हर जाप अवनासी प्रभु आपे आप अपन किया कछु न हो जेसो प्राणी लोचै कोए तिस बिन नाही तेरे किस काम गत नानक जापे कर नाम। रूपवंत हुए नाही मोह है प्रभ की जो सगल कट सो है धनवंता हुए क्या को गर्व है या सब किस किसका दी या दर्व है अत सूरा जे को कहावे प्रभ की कला बिना कहता वै जे को हुए वह दाता जिस देन हार जाने गावा जिस गुर प्रसाद टूटै हो रोग नानक सूजन सदारो जो मंदिर को थम है थमन त्यों गुर का शब्द मन अस्थमन जो पाखा नाव चढ़त रह प्राणी गुर चरण लगत निस्तर जो अंधकार दीपक प्रगास गुर दर्शन देख मन हुए विगास जो माओ ध्यान में मार्ग पावै त्यों साधु संग मिल जोत प्रगटावै त्यों संतन की बांछो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूरख काहे बिल लाइ पूर्व लिखे का लिखिया पाइय दुख सुख प्रभ देवन हार अवर त्याग तुत सहचिता जो कछ करे सोई सुख मान भूला काहे फिरे अजान कौन बसताई तेरे संग लपट रहो रसलू भी पतंग राम नाम जप हृदय माहे नानक पत छेती कर जाहे जिस वक्र को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया तजब मान ले हो मन मूल राम नाम हृदय महतूल लाद खेप संतै संचाल अवर त्याग बिखिया जंजाल धन धन कह सब कोए उखूजल हर दर गै सोए यो वापार विरला वापार है नानक ताकै सद बलिहार है चरण साध के तुय तुय पियो अर्व साध को अपना जियो साध की धूर करो इसना साध ऊपर जाइए कुर्बान साध सेवा वड भागी पाइए साध संग हर कीर्तन गाइए अनिक विघन ते साधु राखै हर गुण गाय अमृत रस चाखै ओट गही संतै दरियाया सर्व सुख नानक तेह पाया फिर तको जीवा लनहार भूखे कौ देवत आधार सर्व निदान जाकी दृष्टि माहे पूर्व लिखे का लहना पाहे सब किस किसका उकरण है जोग तिस बिन दूसर हुआ न होग जप जन सदा सदा दिन रैनी सब ते ऊच निर्मल ही करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सोजन निर्मल थिया जाके मन गुर की प्रतीत तिस जन आवै हर प्रवचीत भगत भगत सुनिए तिहलोए जाके हृदय को होए सच करनी सचता की रहत सच हृदय सत मुख कहत साची दृढ़ साचायाकार सच वरतै साचा पासार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सो जन सच समाता। श्लोक
रूप न रेख न रंग किच त्रिगुण ते प्रभ भिन्न तिसे बुझाई नानका जिस होवै सो प्रसन्न अष्टपदी। अविनाशी ब्रह्मन महराज मानुकी तू प्रीत त्याग किसते पर ना ही किचकोए सर्व निरंतर एक को सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद सा तेरे की चरणी पाओ नानक कै मन हो अनराओ मनसा पूरन सरना जो जो कर पाया सोई हो हरन भरन जाका नेत्र फोर तिसका मंत्र न जानै होर अनदरु मंगल सद जाकै सर्व थोक सुनिए करता कै राज में राज जोग में जोगी ताप में तपीसर ग्रिस्त में भोगी त्याय त्याय भगत सुख पाया नानक तिस पुर का किन अंत न पाया जाकी लीला कीमत नाहे सगल देव हारे अवगाहे पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोई अपने सूत सुमत ज्ञान ध्यान जिंदे जिंदास नाम त्या वैसे क्यों गुण मैं जाको परमाए जन्म रह फिरिया वह जाए ऊच नीच इसके स्थान जैसा जना वह तैसा नानक जान नाना रूप नाना जाके रंग नाना भेख करे एक रंग नाना विद किनो विस्थार प्रभ बनासी एक अंकार नाना चलत करे किनवाहे पूरे हो पूर्ण सब ठाए नाना विद कर बणत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घट तिसके सब तिसके ठाओ जप जप जीवै नानक हर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमृत वेद पुराण नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगल आकार नाम के तारे पुरिय सब पवन नाम के संगुदरे सुन श्रवण कर कृपा जिस अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सो जनगत पाए रूप सत जाका सत स्थान पुरख सत केवल प्रधान करतूत सत सत जाकी बाणी सत पुरख सब माहे सुमाणी सत कर्म जाकी रचना सत मूल सत सत उत्पत सत करनी निर्मल निर्मली जिसे बुझाए तिसे सब भली सत नाम प्रभ का सुखदाई विश्वास सत नान गुर ते पाई सत बचन साधु उपदेश सत ते जन जा करदै प्रवेश सत निरत बुझै जे कोए नाम जपता की गत होए आप सत किया सब सत आपे जाने अपनी मित गत जिसकी सृष्टो करने हार अवर न बूझ करत विचार करते की मित न जाने किया नानक जो तिस भाव है सो वरतिया बिस्मन बिस्म भय बिस्माद जिन बूझया तिस आया स्वाद प्रभ कै रंग राजन रहे गुर कै बचन पदार्थ लहे होए दाते दुख कटनहार जाकै संग तरै संसार जन का सेवक सो वड भागी जन

तत् ज्ञान तिस मन प्रगटाया। पहै ते निरपौ होए बसाना, जिस ते उपजिया तिस माही समाना। बस्त माही ने बस्त गडाई, ताको भिन्न न कह ना जाई। बूझै बूझन हार वे, नारायण मिले नानके। ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी। ठाकुर के सेवक कै मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत। ठाकुर को सेवक जाने संग, प्रभु का सेवक नाम कै रंग। सेवक को प्रपालन हारा, सेवक की राखे निरंकारा। सो सेवक जिस दया प्रभु धारै, नानक सो सेवक सा सा सुमारै। अपने जन का पर्दा ढाकै, अपने सेवक की सर पर राखै। अपने दास को दे वडाई, अपने सेवक को नाम जपाई। अपने सेवक की आपत राखै, ताकि गत मित कोई न लाकै। प्रभु के सेवक को न पहुँचै, प्रभु के सेवक ऊचते ऊचे। जो प्रभु अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दह दिस प्रगटाया। निकी कीरी मैं कल राखै, भस्म करै लश्कर कोट लाखै। जिसका सास न काट ताप, ताकू राखत देकर हाथ। मानुष जतन करत बहु पात, तिसके करत बिरथे जात। मारन राखे और न कोए, सर्व जिया का राखा सोए। काहे सोच करै रे प्राणी, जप नानक प्रबल कविडानी। बारं बार बार प्रभ जपिए, पी अमृत्यु मन तन त्रपिए। नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस किछ अवर नाहीं दृष्टाया। नाम धन नामो रूप रंग, नामो सुखर नाम का संग। नाम रस जो जन तृप्ताने, मंत्र नाम है नाम सुमाने। उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सदकाम। बोलो जस तिहबा दिन रात, प्रभ अपने जन कीनी दात। करह भगत आत्म कै चाहे, प्रभ अपने स्यों रह समाए। जो हुआ होत सो जानै, प्रभ अपने का हुक्म पहचानै। तिसकी महिमा कौन बखानो, तिसका गुण कैक न जानो। आठ पहर प्रभ सह हजूरे, कहो नानक से जन पूरे। मन मेरे तिन की उटले, मन तने अपना तिन जन दे। जिन जने अपना प्रभु पछाता, सो जन सर्व थोक का दाता। तिस की शरण सर्व सुख पावै, तिसके दर सब पाप मिटावै। अवर से आनव सगली छाड, तिस जन की तू सेवा लाग। आवन जान न होवी तेरा, नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। सलोक सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाओ। तिसके संग सिख उदरै, नानक हर गुण गाओ। सतगुर सिक्की करै प्रतपाल, सेवक को गुर सदा दयाल। सिख की गुर दुरमत मल हिरै, गुर बचने हर नाम उचरै। सतगुर सिख के बंधन काटै, गुर का सिख विकार ते हटै। सतगुर सिख को नाम धन दे, गुर का सिख विडभागी हे। सतगुर सिख का हलत पलत सुवारै, नानक सतगुर सिख को जी नाल सुमारै। गुर कै ग्रह सेवक जो रह, गुर की आज्ञा मन में सह। आपस को कर कछ न जनावै, हर हर नाम हृदय सत्यावै। मन बिचै सतगुर कै पास, ते सेवक के कार्य राज।
सेवा करत हुए निकामी, तिसको होत प्राप्त स्वामी, अपनी कृपा जिसे आप करे, नानक सो सेव गुर की मत ले। बीस बिस्वे गुर का मन मान है, सो सेवक परमेश्वर की गत जान है, सो सतगुरु जिस हृदय हर नाओ, अनेक बार गुरु को बल जाओ। सर्व निदान जी का दाता, आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता, ब्रह्म मैं जन जन मैं पार ब्रह्म, एक कहे आप नहीं कछ भरम, सह सियान पलया न जाइए, नानक ऐसा गुरबिड भागी पाइए। सफल दर्शन पेखत पुनीत, परसत चरण गत निर्मल रीत, पेटत संग्राम गुण रवे, पार ब्रह्म की दर गय गवे। सुनकर बचन करन आघाने, मन संतोख आत्म पतियाने, पूरा गुर अख्यो जाका मंत्र, अमृत दृष्ट पे कह हुए संत, गुण बेअंत कीमत नहीं पाए, नानक जिस पाव है तिस लय मिलाए। जे बाए कुष्ठत अनेक, सतपुरख पूर्ण विवेक, काहू बोल न पहुंचत प्राणी, अगम गोचर प्रभ निर्वाणी, निराहार निर्वैर सुखदाई, ताकी कीमत किने न पाई, अनिक भगत बंधन नित कर है, चरण कमल हृदय सिमरै। सद बलिहारी सतगुरे अपने, नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने, यो हर रस पावै जन कोए, अमृत पीवै अमर सो होए, उस पुर का नाही कदे विनाश, जाके मानु प्रगटे गुणतास। आठ पैर हर का नाम ले, सच उपदेश शिव को दे, वो माया कै संग न लेप, मन महरा कै हर हरेप, अंधकार दीपक प्रगासे, नानक परमु दुख तहते नासे, तप्त माय ठाठ वरताई, अनद भया दुख नाठे पाई, जन्म मरण के मिटे अंदेशे, साधु के पूर्ण उपदेशे, पहु चुका निरपौ हुए बसे, सगल ब्याद मंते खै नसे, जिसका सा तिन कृपा तारी, साध संग जपना मुरारी, थित पाई चुके प्रम गवन, सुन नानक हर हर जस रवन। निर्गुण आव सरगुण पियो ही, कला तार जिन सगली मोही, अपने चरित प्रभाव बनाए, अपनी कीमत आपे पाए, हर बिन दूजा नाही कोई, सर्व निरंतर एको सोए। ओत पोत रव्या रूप रंग, पए प्रगा साध कै संग, रच रचना अपनी कल धारी, अनिक बार नानक बलिहारी। सलो

जो जो जपै सोए पुनीत, भगत पाए लावे मन हीत, हम निर्गुण यार नीच जान, नानक तुमरी शरण पुरख भगवान, सर्व वैकुंठ मुक्त मुख पाए, एक निमकर की गुण गाए, अनिक राज भोग वडियाई, हर के नाम की कथा मन पाई, बहु भोजन का पुर संगीत, रसना जपती हर हरनी, पली सुकरनी शोभा तनवंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत, साध संग प्रभ देहो निवास, सर्व सुख नानक परगास, सलोक सारगुण निर्गुण।

जाप अष्टपदी जब कारु कछ न दृष्टेता पापुन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संकमात जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरक शोक कहो किसे व्यापत जब अपना पाप पार ब्रह्म तब मोह कहा किस होत परम अपन खेला वर्ती जाओ नान करने हार न दूजा जब होत प्रभ केवल तनी तब अंध मुक्त कहो किस कहो गनी जब एक हर गम पारो तब नरक सुर कहो कौन उतारो जब निर्गुण प्रभ सह सुभाए तब शिव शक्त कहो कित ठाए जब आप है आप अपनी ज्योतर है तब कवन निडार कवन कत डरै अपन चलताप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख अपना सुन तय जन्म मरण को गह बिना सुन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किसो हुए जब अभिगत गोचर प्रभ एका तब चित्रगुप्त किच पूछत लेखा जब नाथ निरंजन गोचर गादे तब कौन छुट्टे कौन बंधन बादे अपना पापी चर जा नानक अपन रूप आपी उपर जा जह निर्मल पुरख पुरख पत होता तह बिन मैल कहो क्या तोता जय निरंजन निरंकार निर्वाण तय कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय चल चिद्र लगत को कीश जय ज्योत स्वरूपी जो संसमावे तय किसे पूहु कवन त्रिवतावे करण करावन करने हार नान करते का नाहि सुमार जब अपनी शुभ अपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई जय सर्व कला आप प्रवीण तय वेद तेव कहा कोचीन जब अपन आप पुरतार है तो सगन अब सगन कहा विचार है जय अपन ऊच अपन आप नेरा तय कौन ठाकुर कौन कही है चेरा विस्मन विस्म रहे विस्मात नानक अपनी गत जानो आप जय अचल छेद भेद समाया ऊहा कि सह व्यापत माया आपस को आप आदेश क्यों गुण का नाही प्रवेश जय कह एक भगवंता तै कौन चिंत किस लागे चिंता जय अपना पाप त्यारा तै कौन कथे कौन सुन नहारा बहु बेअंत ऊचते उचा नानक आपस को आप पहुंचा जय प्रचो प्रपंच कार त्यो गुण मैं किन्नो विस्तार आपुन तै पही कहावत को नरक को स्वर्ग बंचावत।

नील संकोचे तू नानक कै। जय अभिगत भगत आप, जय पसरे पासार संत प्रताप। दू पाका पेतनी, उनकी शोभा उन्हू बनी। आपह कौत करे अनद चोज, आपह रस भोगन निरजोग।

कह दृष्टारु अष्टपदी। आप कथे आप सुनने हार, आप है का विस्तार, जात भावे था सृष्ट पाई, अपने भाने ले सुमाई, तुम ते भिन्न नहीं किच हुए, अपन सू सब जगत गुरुई, जाकू प्रभ जीव आप जाए सच नाम।

राम सुखमणि सब ते ऊचता की शोभा बनी नानके गुण नाम सुखमणि सुखमणि सुखमृत प्रभ नाम भगत जना कै मन विश्राम। वाहिगुरु जी का खालसा वाहि

लप पाप दो राजा महता कूढ़ हुआ सिकदा काम ने वसद पुछिए बह बह करे विचार अंधी रैयत ज्ञान भी होनी पाहे भरे मुर्दार ज्ञानी नचे वाजे वावे रूप करे श्रृंगार ऊंचे कुके वादा गावे जोदा का विचार मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय।

0: योग चरणा सो करया महला दूजा
1: योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है खत्री शब्दं सूर शब्दं सूदर शब्दं पुराकृत है सर्व शब्द

गुरु गुरी निवाच अंतर जामी सतगुरु जी तन तन साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज जाग दी जोत हाजर हजूर आप जी तर दी हाजी प्रतिभा बेअंत गुरसिख माई पाई रो आप जी दी बाणी दे सत्कार जो बेअंत माया बेटा कर दे आप जी सारे सिखी दान करो साधन चन्ना कमा प्यार रखना खजाने पर प्रकने सो आओ गुरु प्यारी सत्संग जियो कीर्तन की इनक सेवा प्रवान करनी हुई भुला चुका दिखीमा करनी आओ अगले प्रोग्राम सरवण करिए सिख पंथ के विद्वान सत्कार्यो ज्ञानी लखविंदर सिंह जी श्री दमदमदास साहब वाले उन्हों पासों अज दे श्री मुखवाग दी विचार गुर इतिहासिक इतिहास सरवण करिए दस लो फतेह प्रवान करो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

गुर अमरदास तीर्थ पियो पर कामी तारण तरन अग अंतक बदै ना साल कब गुर रामदास तेरी शरण हर की वडियाई हो आख ना सका हो मूर्ख मुग्धनी जान जन नानक को हार बख्श लै मेरे स्वामी

कर्ता निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजूनी सैदम गुर प्रसाद जब आद सच जुगाद सच है भी सच नानक उस

अंतर नाही, जिनको विसरे मेरो राम प्यारा से मुए मर जाही। मन तन राव रहा जगदीशर पेखत सदा हजूरे को, नानक राव रहो सब अंतर सर्व रहा पर पूरे। मलार महला पंजवा हर कै भजन कौन कौन न तारे, खग तन मीन तन खग तन मीन तन मृग तन ब्राह तन साधु संग उधारे। रहाओ देव कुल दैत कुल जख किनर नर सागर पुत्रे पारे। जो जो भोजन करे साधु संग ताके दुख बिदारे, काम क्रोध महा बिख्या रस इनते पय निरारे। दीन दयाल जपय करुणा मै नानक सद बलिहारे। मलार महला पंजवा आज मैं बैस्यो हर हाट, नाम रासा जी कर जन स्यो जाओ न जम कै काट। रहा तार अनुग्रह पार ब्रह्म राखे भ्रम के खुले कपाट, बेसुमार साहो प्रपाया लाहा चरण निदखाट। शरण गही अचुत बनासी किलबे काडे है शांट, कल कलेश मिटे दास नानक बोहर न जो नी माट। मलार महला पंजवा बहु विद माया मोय हिरानो, कोट मधे को बिरला सेवक पूर्ण भगत चिरानो। रहा इत्योत डोल डोल श्रम पायो, तन तन होत बिरानो, लोग दोराए करत ठगियाई हो तो संग न जानो। मृग पंथी मीन दीन नीचे संकट फिर आनो, कौ नानक पाहन प्रवता रहो साध संगत सुख मानो। मलार महला पंजवा दुष्ट मुए बिख खाई री माई, जिसके जीत नहीं रख लीने मेरे प्रभ को कृपा आई। रहा अंतर जामी सब मैं वरतै ता पौ कैसा पाई, संग सहाई छोड़ न जाई प्रभ दी सह सबनी ठाई। अनाथा नाथ नी दीन दुख भंजन, आप लिए लड़ लाई हर की ओट जीव दास तेरे, नानक प्रभ सरनाई। मलार महला पंजवा मन मेरे हर के चरण रवी जय, दर्श प्यास मेरो मन मोयो हर पंख लगाए मिली जय। रहा खोजत खोजत मार्ग पायो साधु सेव करी जय, तार अनुग्रह स्वामी मेरे नाम महारस पी जय। त्राहे त्राहे कर सरणी आए जल तो कृपा की जय, कर गए लिहो दास अपने को नानक अपनो की जय। मलार महला पंजवा प्रभ को भगत बच्छल बिरदायो, निंदक मार चरण तल दीने अपनो जस वरसायो। रहाओ जय जयकार कीनो सब जग में दया जीवन मह पायो, कंठ लाए अपनो दास राख्यो ताती वाओ न लायो। अंगीकार कियो मेरे स्वामी भ्रम भ्रम मेट सुखायो, महानंद करो दास हर के नानक विश्वास मन आयो। राग मलार महला पंजवा चौपदे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। गुरमुख दिसै ब्रह्म पसार, गुरमुख त्रै गुणियां विस्तार, गुरमुख नाद वेद विचार बिन गुर पूरे घोर अंधार। मेरे मन गुर गुर करत सदा सुख पाईऐ, गुर उपदेश हर हृदय वस्यो सास गिरास अपना खसम त्याईऐ। रहा गुर के चरण मिटो बल जाओ, गुर के गुण अनदिन नित गाओ, गुर की धूड़ करो इसनान साची दरगह पाईऐ मान। गुर बोहित भव जल तारण हार, गुर भेटिया ना होए जून अवतार। गुर की सेवा सोजन पाए जाको कर्म लिखिया तोरियाए। गुर मेरी जीवन गुर आधार, गुर मेरी वर्तन गुर परवार, गुर मेरा खसम सत गुर सरनाई, नानक गुर पार ब्रह्म जाकी कीम न पाई। मलार महला पंजवा गुर के चरण हृदय वसाए, कर कृपा प्रभ आप मिलाए, अपने सेवक को लय प्रभ लाए ताकि कीमत कही न जाए। कर कृपा पूर्ण सुखदाते तुमरी कृपा ते तू चित्या मैं, आठ पहर तेरा रंग राते। रहा गावन सुनन सब तेरा पाणा, हुकम बूझै सो साज सुमाणा। जब जब जीवै तेरा नाम तज मन तुझ बिन दूजा नाहीं साव। दुख सुख करते हुक्म रजाए, पाणै बख्स पाणै दे सजाए, दोहां सिरिया का करता आप कुर्बान जाई तेरे प्रताप। तेरी कीमत तू है जाणै, तू आपै बूझै सुन आप बखाणै, सही भगत जो तो दुपाणे नानक तिनकै सत कुरबाणे। मलार महला पंजवा
परमेश्वर हो दयाल, मेघ वर्षा अमृतार, सगले जी जन तृप्ता से कार जाए पूरे रासे, सदा सदा मन नाम समाल, गुरपुरे की सेवा पाया ऐथै उथै निभाय नाल। रहाव दुख भन्ना पै भंजन हार, अपने जिया की कीर्ति सार, ना राखन हार सदा मेहरबान, सदा सदा जाइए कुर्बान। काल गवाया करता आप, सदा सदा मन तिसनु जाप, दृष्टा राखे सब जंत, गुण गावो नित नित भगवंत। एको कथा आपे आप, हर के भगत जान है प्रसाद, ना वै की पैज रखदा आया, नानक बोलै तिसका बुलाया। मलार महला पंजवां, गुरसरण आई सगल निदान, साची दरगह पाई मान, भ्रमपो दुख दर्द सब जाए, साध संग हर गुण गाए। मन मेरे गुर पूरा सलाहे, नाम निदान जपो दिन राती, मन चिंदे फल पाए रहा। सतगुर जे वड़ेवर न कोए, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सोए, जन्म मरण दूत तेरा खै माया, बिख फिर बौड़ न चाखै। गुर की महिमा कथन न जाए, गुर परमेश्वर साचै नाए, सच संयम करनी सब साची, सो मन निर्मल सो जो गुर संग राची। गुर पूरा पाइए वडभाग, काम क्रोध लोभ मन ते त्याग, कर कृपा गुर चरण निवास, नानक की प्रभ साचे अरदास। राग मलार महला पंजवां, पड़ताल करती जाए कुंकार सतगुर प्रसाद। गुर मनार प्रे दयार, स्यो रंग किया की नोरी सगल सिंगार, तज्योरी सगल विकार, ताव तो अस्थिर थी यार। ऐसे रे मन पाए कहे आप, गुवाए कहे कर साधन साधन स्यो संग, बाजे बजाय मृदंग, अनाहद को किलरी, राम नाम बोले मधुर बयन अत सुहिया। ऐसे तेरे दर्शन की शोभ अत अपार, प्रेमोग तैसे ही संत सांग संत बने, पाव उतार नाव पने, राम राम राम माल। मन फेरते हर संग संगिया, जन नानक प्रियो प्रीतम थिया। मलार महला पंजवां, मन कने प्रमय बनाए, उमक त्रस चाले प्रभ मिलबे की चार। हाओ त्रै गुण माई मोहे आई, कहो बेदन काहे, अनुभाव सगर किए, नह दुख साख कै लाहे, भज सरन साधु नानका, मिल गुण गोबिंद गाहे। मलार महला पंजवां, प्रे की सोत सुहावनी निकी, हाउ गण गंधर्व अप्सरा, नंद मंगल रस गावनी निकी। राव तुनत ललत गुण अग्ञाय, अनेक भांत बहुविध रूप दिखावनी निकी। गिर तल थल जल भवन भरपुर, घट घट लालन श्यामनी निकी, सा संग रमैया रस पायो, नानक जाकै भावनी निकी। मलार महला पंजवां, गुर प्रीत प्यारे चरण कमल रे दिन तरतारे, रहाओ दर सफल्यो दर्श पीठ्यो, गए केल बिख गए मन निर्मल उजियारे, विषम विस्मय विषम पई, अग कोट हरते नाम लई, गुर चरण मस्तक डार पई पही। प्रभ एक तू ही एक तू ही, भगत टेक तुहारे, जन नानक शरण दुआरे। मलार महला पंजवां, बरस सरसिया गया हुए आनंद सगल भाग, रहाओ संत संगे मन पर पड़े, मिल मेघ धर सुहाग, कन कोर प्रीत मोर, चित चात्रिक बूंद ओर, ऐसो हर संगे मन मोह, त्याग माया तो मिल संत नानक जागया। मलार महला पंजवां, गुण गोपाल गाओ नीत, राम नाम धार चीत, रहाओ छोट मान ताज गुमान, मिल साधु आकै संग, हर सिमर एक रंग, मिट जाहें दोख मीत। पार ब्रह्म पय दयाल, बिनस गए बिखै जंजाल, साजना कै चरण लाग, नानक गावै गोविंद नीत। मलार महला पंजवां, कान गर्जत गोबिंद रूप, गुण गावत सुख चैन, रहाओ हर चरण सरन तरन सागर, तुन अनहता रस बैन, पथिक प्यास चित सरोवर, आत्म जल लैन, हर दर्श प्रेम जन नानक, कर कृपा प्रभ दैन। मलार महला पंजवां, हे गोबिंद हे गोपाल हे दयाल लाल, रहाओ
प्राण नाथ नाथ सखे दीन दर्द निवार। हे सम्राट अगम पूर्ण मोह माया तार, अंधकूप महापयान पयान नानक पार उतार। मलार महला पहला अष्टपदिया कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चकवी नैन नींद न चाहे बिन पर नींद न पाई, सूर चर प्रयो देख नैनी निव निव लागे पाई। फिर पावे प्रेम सिखाई तस्मन घड़ी नह जग जीवाय, सी प्यास प्यास दिसाई। रहाव सरवर कमल किरण आकाशी बिकसै सहि सुभाई, प्रीतम प्रीत बनी अभ्यासी ज्योति ज्योत मिलाई। चात्रिक जल बिन प्रयो प्रयो टेरा बिलप रहै, बिलप करै बिलाई। कान हर कोर दसे दिस बरसै, बिन जल प्यास न जाय। मीन निवास उपजय जल ही ते, सुख दुख पुरब कमाई। खिन तिल रह न सकै पल जल बिन, मरण जीवन तिस ताई। धन वांडी परदेश निवासी, सच्चे गुर पै शब्द पठाई। गुण संग्रह प्रवृदय निवासी, भगत रहे रति हर खाई। प्रे प्रयो करै सब है जेती, गुर भावै प्रयो पाई। प्रयो नाले सद ही सच संगे, नदरी मेल मिलाई। सब मैं जियो जियो है सोई, घट घट रहा समाई। गुर प्रसाद घर ही प्रगासिया, सहजे सहज समाई। अपना काज सवारो आपे, सुखदाते गोसाई। गुर प्रसाद घर ही फिर पाया, तो नानक तप्त बुझाई। मलार महला पहला, जागद जाग रहे गुर सेवा बिन, हर मैं को नाही। अनेक जतन कर रहे न पावे, आज काज टर पाही। इस तन धन का करो कर गर्भ कैसा, बिन सद्वार न लागे बबरे। हो मैं गर्भ कपै जाके ऐसा रहाव। जय जगदीश प्रभु रखवारे, राख परख सोई। जेती है तेती तुझ ही ते, तुम सारे अवर न कोई। जी उपाय जुगत वस्तीनी, आपे गुरमुख अंजन। अमर अनाथ सर्व सिर मोरा, काल बिकाल परम पय खंजन। कागद कोट इह जगै बपरो, रंगन चेहन चतुराई। नानी सी बूंद पवन पत खोवै, जन्म मरै बिनता। जन्म मरै खिन ताई, नदी उपकंठ जैसे घर तरवर। सर पर घर सरपन घर घर माही, उल्टी नदी कहां घर तरवर। सरपन दसै दूजा मन माही, गारुड़ गुर ज्ञान ध्यान गुर बचनी। बिख्या गुरमत जारी, मन तन हे भय सच पाया, हर की भगत निरारी। जेती है तेती तुद जाचे, तुम सर्व जियां दयाला। तुमरी शरण परे पत राखो, साच मिलै गोपाला। बादी तंद आंद नहीं बूझै, आंद नहीं सूझै। बद कर्म कमावै, सतगुर मिलै ता सूझस बूझस। सच मन ज्ञान समावै, निर्गुण देह साच बिन काची। मैं पूछो गुरे अपना, नानक सो प्रा प्रभु दिखावै। बिन साच जग सुपना, मलार महला पहला। चात्रिक मीन जल ही ते, सुख पावै सारिंग शब्द सुहाई। रैन बिहा बोलियो मेरी माई। रहाओ प्रेसो प्रीत ना उल्टै कबहून, जो तै पावै साई। नदी गई हो मैं तन थाकी, सच मत हृदय सुमा। नींद गई हो मैं तन थाकी, सच मत हृदय समाई। रूखी बिरखी उडो भूखा पीवा, नाम सुपाई। लोचन तार ललता बिल्लाती, दर्शन प्यास रजाई। प्रे बिन सिगार करी तेता, तन तापै कापर अंग न सुहाई। अपने प्यारे बिन एक खिन रह न सकूं, बिन मिले नींद न पाई। फिर निजीक न बूझै बपड़ी, सतगुर दिया दिखाई। सहज मिलिया तब ही सुख पाया, तृष्णा शब्द बुझाई। कौ नानक तुझते मन मानिया, कीमत कहन न जाई। मलार महला पहला, अष्टपदिया कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। अखली उंडी जल पर नाल, डूगर उचो गढ़ पाताल। सागर शीतल गुल शब्द विचार, मार्ग मुक्ता हो मैं मार। मैं अंधले नावे की जोत, नाम धार चला गुर कै पै पीत। रहाओ सतगुर सदी पादर जान, गुर कै तकिया साचै तान। नाम संभाल सरूड़ी बाण, थै पावै दर लहस पिराण। उड़ा बैसा एक लिवतार, गुर कै शब्द नाम आधार। ना जल डूंगर ना ऊंची तार, निज करवासा तह मग न चालन हार। जित घर वसै तू है बिद जाने, बीजो मैल न जापै। सतगुर बाजो समझ न होवी, सब जग दबिया छापै। करण पलाव करै बिरला तो, बिन गुर नाम न जापै। पल पंकज मह नाम छिड़ाए, जे गुर शब्द सियापै।
ਇੱਕ ਮੂਰਖਨ ਦੇ ਮੁਗਧ ਗੁਵਾਰ ਇਸ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਭੈ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਗੁਰ ਕਰਨੀ ਸਚ ਬਾਣੀ ਇੰਦ ਵਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਜਿਨ ਪੀਤੀ ਤਿਸ ਮੋਖ ਦੁਆਰ ਨਾਮ ਭੈ ਭਾਇ ਹਿਰਦੈ ਵਸਾਹੀ ਗੁਰ ਕਰਨੀ ਸਚ ਬਾਣੀ ਇੰਦ ਵਰਸੈ ਧਰਤ ਸੁਹਾਵੀ ਘਟ ਘਟ ਜੋਤ ਸਮਾਣੀ ਕਾਲਰ ਵੀ ਜਿਸ ਦੁਰਮਤ ਅਸੀ ਨੀ ਗੁਰੇ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਜੋ ਘੋਰ ਅੰਧਾਰਾ ਡੂ ਮੋਏ ਬਿਨ ਪਾਣੀ ਜੋ ਕਿ ਕਿਨੋ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਰਜਾਏ ਜੋ ਤੁਰ ਲਿਖਿਆ ਸਮੇਟਣਾ ਨਾ ਜਾਏ ਹੁਕਮੇ ਬਾਦਾ ਕਾਰ ਕਮਾਏ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਚੈ ਸਾਚ ਸਮਾਏ ਚੌਦਸ ਹੁਕਮ ਵਰਤੈ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰਾ ਚੌਦਸ ਨਾਮ ਪਤਾਲੰ ਸਭ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੈ ਪ੍ਰਭ ਸਾਚਾ ਕਰਮ ਮਿਲੈ ਬਿਆਲੰ ਜਾਮਣ ਮਰਨਾ ਦੀ ਸਹਿ ਸਭ ਉਭੈ ਉਭਉ ਖੁਦਿਆ ਨਿਦਰਾ ਕਾਲੰ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਮਨ ਭਾਵੈ ਸਾਚੀ ਨਦਰ ਰਸਾਲੰ ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮਰਨ ਮੁਕਤ ਗਤ ਸਾਰ ਨ ਜਾਣੈ ਕੰਠੈ ਬੈਠੀ ਗੁਰਸਿਮਰਤਿ ਪਛਾਨੈ ਤੂੰ ਕੈਸੇ ਆੜੀ ਫਾਥੀ ਤੂੰ ਕੈਸੇ ਆੜ ਫਾਥੀ ਜਾਲ ਲਖ ਨ ਜਾਚੈ ਹਿਰਦੈ ਸੰਭਾਲ ਰਹਾਉ ਏਕ ਜੀ ਕੈ ਜੀ ਆਖਾਹੀ ਜਲ ਧਰਤੀ ਬੂਢੀ ਜਲ ਮਾਹੀ ਸਰਬ ਜੀ ਕੀਏ ਪ੍ਰਤ ਪਾਨੀ ਜਬ ਪਕੜੀ ਤਬ ਹੀ ਪਛਤਾਨੀ ਜਬ ਗਲ ਫਾਸ ਪੜੀ ਅਤ ਭਾਰੀ ਉੜ ਨਾ ਸਕੈ ਪੰਖ ਪਸਾਰੀ ਰਸ ਚੁਗੈ ਮਨ ਮੁਖ ਗਵਾਰ ਫਾਥੀ ਚੂਟੈ ਗੁਣ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਤੂਟੈ ਜਮਕਾਲ ਹਿਰਦੈ ਸਾਚਾ ਸ਼ਬਦ ਸੰਭਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਸਾਚੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਸਾਰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਰੱਖੈ ਅਵਤਾਰ ਸੇ ਦੁਖ ਆਗੈ ਜੀ ਭੋਗ ਬਿਲਾਸੇ ਨਾਨਕ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਸਾਚੇ ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਅਸ਼ਪਦੀਆ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਰਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈਐ ਬਿਨ ਕਰਮੈ ਪਾਇਆ ਨਾ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੀਐ ਕੰਚਨ ਹੋਈਐ ਜਾਂ ਹਰ ਕੀ ਹੋਏ ਰਜਾਏ ਮਨ ਮੇਰੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚਿਤ ਲਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰ ਪਾਈਐ ਸਾਚਾ ਹਰ ਬੂਝੀਐ ਹਰ ਸਿਉਰ ਹੈ ਸਮਾਏ ਰਹਾਉ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਗਿਆਨ ਉਪਜੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਸਾ ਜਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਹਰ ਬੂਝੀਐ ਗਰਭ ਜੋਨੀ ਨ ਪਾਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀਵਤ ਮਰੈ ਮਰ ਜੀਵੈ ਸਬਦ ਕਮਾਏ ਮੁਕਤ ਦੁਆਰਾ ਸੋਈ ਪਾਏ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਏ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਸਿਵ ਘਰ ਜੰਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਸਖਤ ਗਵਾਏ ਅਚਰਚਰੈ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਪਾਏ ਪੁਰਖੈ ਪੁਰਖ ਮਿਲਾਏ ਧਾਤਰ ਬਾਜੀ ਸੰਸਾਰ ਅਚੇਤ ਹੈ ਚੱਲੈ ਮੂਲ ਗਵਾਏ ਲਾਹਾ ਹਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਪਾਈਐ ਕਰਮੀ ਪੱਲੈ ਪਾਏ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਣ ਕੇ ਨੈ ਨਾ ਪਾਇਆ ਮਨ ਵੇਖੋ ਰਿਦਾ ਵਿਚਾਰ ਵਡਭਾਗੀ ਗੁਰ ਪਾਇਆ ਭਵ ਜਲ ਉਤਰੇ ਪਾਰ ਹਰ ਨਾਮਾ ਹਰ ਟੇਕ ਹੈ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਗੁਰ ਮੇਲ ਲਹੋ ਹਰ ਜੀਓ ਪਾਵੋ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਮਸਤਕ ਲੀਲਾਟ ਲਿਖਿਆ ਧੁਰ ਠਾਕੁਰ ਮੇਟਣਾ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇ ਤਨ ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਜਿਨ ਹਰ ਭਾਣਾ ਪਾਏ ਮਲਾਰ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਵੇਦ ਬਾਣੀ ਜਗ ਵਰਤਦਾ ਤ੍ਰੈ ਗੁਣ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬਿਨ ਨਾਵੈ ਜਮ ਡੰਡ ਸਹਿ ਮਰ ਜਨਮੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਟੇ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਮਨ ਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਸੇਵ ਸਮਾਏ ਵਡੇ ਭਾਗ ਗੁਰ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ ਰਹਾਉ ਹਰ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪਾਈ ਹਰ ਆਪੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਹਰ ਆਪਣੇ ਭਾਣੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਕੀਆ ਹਰ ਸਿਉ ਲਾਗਾ ਪਿਆਰ ਹਰ ਕੈ ਭਾਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਸਭ ਜਨਮ ਸਵਾਰਨ ਹਾਰ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਸਤ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਝੈ ਕੋਏ ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਕਰ ਪ੍ਰਭ ਸਾ ਲਾਹੀਐ ਤਿਸ ਜੇ ਵਡੇ ਅਵਰ ਨ ਕੋਏ ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਮਿਲ ਲੈ ਕਰਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਹਰੇ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮਾਹਰੋ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆ ਦਿਖਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਸੈ ਮਨ ਸੰਤੋਖੀਐ ਸਚ ਰਹੇ ਲਿਵਲਾਏ ਹਰ ਕਹਿ ਨਾ ਸਦਾ ਹਰਿਆਵਲੀ ਫਿਰ ਸੁੱਕੈ ਨਾ ਕੁਮਲਾਏ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਪਾਇਓ ਮਨ ਵੇਖੋ ਕੋ ਪਤਿਆਏ ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈਐ ਭੇਟੈ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਮਨ ਮੁਖ ਭਰਮ ਭੁਲਾਇਆ ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਹਰ ਧਨ ਨਾ ਪਾਏ
त्रै गुण सभा ताथा है पढ़ पढ़ करे विचार मुक्त कदे ना होवे ना पायन मोख द्वार बिन सतगुर बंधन ना टूटे नाम ना लगे प्यार पढ़ पढ़ पंडित मुनि थके वेदा का अभ्यास हर नाम चेत चेतना आवे नह निज कर होवे वास जम काल सिरो ना उतरे अंतर कपट विनाश हर नाम है नो सब को प्रताप दा बिन भागा पाया ना जाए नदर करे गुर पेटिए हर नाम वसै मन आए नानक नामे ही ते पति उपजय हर स्यो रहा समाए मलार महला तीजा अष्टपदी घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर हर कृपा करे गुर की कार आय लाए दुख पलर हर नाम वसाए साची गात सच चित लाए गुर की बाणी सद सुनाए मन मेरे हर हर सेव निदान गुर कृपा ते हर तन पाइए अन्न लागे सही ध्यान रहा बिन पर कामन करे सिंगार दो चार नी कहिए ने तो एक वार मन मौका है बाद आचार वो कर्म निड़ावे ना विसार गुरम कामन बनिया सिंगार सबे फिर राख्या उतार एक पछाण हूं मैं मार सो बावंती कहिए नार बिन गुर दाता किने ना पाया मन मुख लोभ दूजे लोभ आया ऐसे गनी ऐसे ज्ञानी बूझो कोए बिन गुर पेटे मुक्त ना होए कह कह कहन कह सब कोए बिन मन मुए भक्त ना होए ज्ञान मती कमल प्रगास तित कट नाम नाम निवास हो मैं भगत करे सब कोए ना मन पीजे ना सुखोए कह कह कहन आप जानाए बिरथी भगत सब जन्म गवाए से भगत सतगुर मन पाए अंदर नाम रहे लिवलाए साध ही नाम वेख हदूर गुर कै शब्द रहा भरपूर आपे बक्से दे प्यार हो मैं रोग वड्डा संसार गुर कृपा ते रोग जाए नानक साचे साच समाए राग मलार शंत महला पंजवाए ओंकार सतगुर प्रसाद प्रीतम प्रेम भगत के दाते अपने जन संगराते जन संगराते दिन सराते एक निमक मनो ना बिसराए गोपाल गुण नित सदा संगे सर्व गुण जगदीसराए मन मोले ना चरण संगे नाम रास जन माते नानक प्रीतम कृपाल सदहू किने कोट मधे जाते प्रीतम तेरी गाते अगम अपारे महापतित तुम तारे पतित पावन भगत वचल कृपा सिंध सुवामिया संत संगे भजन संगे रौ सदा अंतर जामिया कोट जन्म परमंत जोनी ते नाम सिमर तारे नानक दर्श प्यास हर जियो आप लिहो समारे हर चरण कमल मन लीना प्रभ जल जन तेरे मीना जल मीन प्रभ जियो एक तू है भिन्न आन न जनिए गै पूजा लेवो नाम देवो तो प्रसादी मनिए पाज साध संगे एक रंगे कृपाल गोविंदी नाय नाथ नी शरणाय नानक करम आप ना कीना आपस को आप मिलाया परम भंजन हर राया आचर्ज स्वामी अंतर जामी मिले गुण नित प्यारिया महामंगल सुख उपजे गोविंद गुण नित सारिया मिल संग सोहे देख मोहे पूर्व लिखिया पाया बिनवंत नानक सरन तिन की जिन्नी हर हर त्याया वार मलार की महला पहला राणे कैलाश तथा माल दे की धुन एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला तीजा गुर मिलिया मन रैसिया जो बुठे तरन सिगार सब दिस हरियावली सरसरे परे सुबरसाल अंदर रचे सच रंग ज्यो मंजी ठै लाल अंदर रचे सच रंग ज्यो मंजी ठै लाल कमल विकस सच मन गुर कै शब्द निहाल मन मुख दूजी तरफ है वेखो नदर निहाल फाई फाते मिर्ग ज्यो सिर दी सजम काल खुदिया तृष्णा निंदा बुरी काम क्रोध विकराल एनी अखी नदर न आवे जिचर शब्द न करे बिचार तुद भावे संतोखिया चुकया जंजाल मूल रह गुर सेवी है गुर पौड़ी बोहित नानक लगी तत लय तू सच्चा मन सच महला पहला एक उपादर एक दर गुर पौड़ी निज थान रूढ़ो ठाकुर नानका सब सुख सचो नाम पौड़ी
ਆਪੀਨਾ ਆਪ ਸਾਜਿਆ ਪਛਾਣਿਆ ਅੰਬਰ ਧਰਤ ਵਿਛੋੜ ਚੰਦੋਵਾ ਤਾਣਿਆ ਵਿਣ ਥੰਮਾ ਗਗਨ ਰਹਾਏ ਸਬਦ ਨੀ ਸਾਣਿਆ ਚੁਰ ਸੂਰਜ ਚੰਦ ਉਪਾਏ ਜੋ ਸਮਾਣਿਆ ਕੀਏ ਰਾਤ ਦਿਨ ਅੰਤ ਚੋਜ ਬਿਡਾਣਿਆ ਤੀਰਥ ਧਰਮ ਵਿਚਾਰ ਨਾਵਣ ਕੁਰਬਾਣਿਆ ਤੁਧ ਸਾਰੇ ਵਰਨਾ ਕੋਏ ਕੀ ਆਗ ਵਖਾਣਿਆ ਸੱਚਾ ਤਖਤ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਰਾਵਣ ਜਾਣਿਆ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਸਾਵਣ ਜੇ ਵਸੈ ਚੋ ਚਹੋ ਉਹ ਮਹਾ ਹੋਏ ਨਾਂਗਾ ਮਿਰਗਾ ਮੱਛੀਆਂ ਰਸੀਆਂ ਘਰ ਧਨ ਹੋਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਸਾਵਣ ਜੇ ਵਸੈ ਚੌਵੇ ਛੋੜਾ ਹੋਏ ਗਾਈ ਪੁੱਤਾ ਨਿਰਦਨਾ ਪੰਥੀ ਚਾਕਰ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਚਿਆਰ ਜਿਨ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਬੈਠਾ ਤਾੜੀ ਲਾਏ ਕਵਲ ਛੁਪਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮੈ ਵੱਡਾ ਕਹਾਏ ਅੰਤ ਨਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਤਿਸ ਬਾਪ ਨਾ ਮਾਏ ਕਿਨ ਤੂੰ ਜਾਇਆ ਨਾ ਤਿਸ ਰੂਪ ਨਾ ਰੇਖ ਵਰਨ ਸਬਾਇਆ ਨਾ ਤਿਸ ਭੂਖ ਪਿਆਸ ਰਜਾ ਧਾਇਆ ਗੁਰਮੈ ਆਪ ਸਮੋਏ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਾਇਆ ਸੱਚੇ ਹੀ ਪਤਿਆਏ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵੈਦ ਬੁਲਾਇਆ ਵੈਦ ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਢੋਲੇ ਬਾਂ ਭੋਲਾ ਵੈਦ ਨ ਜਾਣਈ ਕਰਕਲੇ ਜੇ ਮਾਹੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਵੈਦਾ ਵੈਦ ਸੁਵੈ ਸੁਵੈਦ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਗ ਪਛਾਣ ਐਸਾ ਦਾਰੂ ਲੋੜ ਲਓ ਜਿਤ ਵਈਆਂ ਰੋਗਾ ਕਾਣ ਜਿਤ ਦਾਰੂ ਰੋਗ ਉੱਠੀਐ ਤਿਨ ਸੁਖ ਵਸੈ ਆਏ ਰੋਗ ਵਾਹੇ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਵੈਦ ਸਦਾਏ ਪੌੜੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੁ ਮਹੇਸ਼ ਦੇਵ ਉਪਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮੇ ਦਿੱਤੇ ਵੇਦ ਪੂਜਾ ਲਾਇਆ ਦਸ ਅਵਤਾਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜਾ ਆਇਆ ਦੈਤਾ ਮਾਰੇ ਧਾਏ ਹੁਕਮ ਸਵਾਇਆ ਈਸ ਮਹੇਸ਼ੁਰ ਸੇਵ ਤਿੰਨੀ ਅੰਤ ਨ ਪਾਇਆ ਸੱਚੀ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਤਖਤ ਰਚਾਇਆ ਦੁਨੀਆਂ ਧੰਦਾ ਲਾਏ ਆਪ ਛਪਾਇਆ ਕਰਮ ਕਰਾਏ ਕਰਮ ਧੁਰੋ ਫੁਰਮਾਇਆ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਹੇ ਸਖੀ ਕੰਤੈ ਚਿਤ ਕਰੇ ਓ ਨਾਨਕ ਝੂਰ ਮਰੈ ਦੁਆਗਣੀ ਜਿਨ ਅਬਰੀ ਲਾਗਾ ਨੇ ਓ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਸਾਵਣ ਆਇਆ ਹੇ ਸਖੀ ਜਲ ਹਰ ਬਰਸਨਹਾਰ ਨਾਨਕ ਸੁਖ ਸਵਨ ਸੁਹਾਗਣੀ

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल बढ़ शांत पापी पाप अशांत कूड़े आर करे फिर अशांत मलेच मार पाए अशांत निंदक करें।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत काल वाय अशांत पापी पाप अशांत मूड़े आर करे फिराए अशांत मलेच मार पाए अशांत निंदक करे पा नानक नींद कहे क्या मारे न जावा के जो तुम पावे सही परिकार सुसला सुला मत संत नाम संत नाम राम राम संत दो संत कहें सिर्फ।

उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तह मिलंत जम त्रास मिटाई तह मिलियो जम त्रास मिटाई अरदास पाठ वीरत की रामदास राखो शरणाई एक पाठ एक अरदास पाठ कीरत की रामदास राखो शरणाई वाहिगुरु जी वाहिगुरु।

विचार, गुरमुख आप विचारिए लगे सच प्यार, नानक किसन आखिए आपे देवन हार। श्लोक महला तीजा, बाबीहा इहो जगत है मत को परम पुलाए, इहो बाबीहा पशु है इसनो बुझण नाहे, अमृत हर का नाम है जत पीते तिख जाए, नानक गुरमुख जन पिया तिन बहुड़ न लागी आए। महला तीजा, मलार शीतल राग है

उठै जिया जुगत हुए तरणी नो सिगार हुए नानक एहो जगत सब जल है जल ही सब कोए गुर प्रसादी को विरला बुझै सो जन मुक्त सदा होए पौड़ी सच्चा वे परवाहो इको तू तही तू सब किछ आपे आप दूजे किस गणी मानस कूड़ा गर्भ सच्ची तुद मणि आवा गौण रचाए उपाई मीरनी सतगुर सेवे अपना आया तिस गुणी जे हमें बिच हो जाए ताके ही गणत गणी मन

राजे खान मलूक कहे कहावे कोई एक सास दाव है संच तन दूजे पत खोई एक दाते एक मंगते सबना सर सोई विण नावे बाजारिया

दाता निदान है असी अवगणियार। जिस बक्से सो पाई सी गुर सबदी विचार। श्लोक महला पंजमा रात न विहावी।

पशु मानस चम पलेटे अंदरों का लिया सब वर्तै सच सच्चे शब्द निहालिया नानक नाम निधान है पूरे गुर देखा लिया श्लोक महला तीजा बबी है हुक्म पशान।

सतगुर ते अमृत जल पाया सहजे रहा समाए। पौड़ी एक वन खंड बैसह जाए साधन देवे एक पाला ककर पन शीतल जल है भई। एक पसम चढ़ाव है अंग मेल ना तो भई एक जटा विकट विकराल कल कर खोवे एक नगन फिर।

कृष्णा हुई बहुत क्वे नाति जई कर्म वधे के लो कर्म वधे के एक अन्न न खाए मूर्खा तिना क्या की जई कृष्णा हुई बहुत क्वे नाति जई कर्म वधे के लो खप मरी जई लाहा नाम संसार अमृत पी जई हर भक्ति असने है गुरमुख की जई श्लोक महल्ला तीजा गुरमुख मलार राग जो कर है

कर दया लोका मन उपजे चाओ जिसके हुकम इंद वर्षदा तिसके सद बलिहार जा गुरमुख शब्द संभाली।

मन मुख गला गोइया किता चाओरली, नानक सच्चे नाम बिन सरखुर पत पाटी। पौड़ी अमृत नाम सदा सुख दाता, अंते हुए सखाई बाज गुरु जगत बौराना।

साहेब सो सेवक तेहा तिस पाणा मानव साई आपने पाणे कहो किन सुख पाया आंदा अंध कमाई दिख्या कदे ही रज्जै नाही मूर्ख भुख ना जाई दूजे सब को लग बगुता

लक्कड़ लाई है क्या किया, जा टूटे पत्थर बंद, बंद टूटा बेड़ी नहीं, ना तुल्हा ना हाथ, नानक सच्चे नाम विण केते डूबे साथ। महला पहला, लख मण सोए ना, लख मण रूपा लख, लख साहा सर साहा, लख लस कर।

राजे सी मुकदम कुत्ते जाए जगायन बैठे सुते चाकर ने दा पायन काओ रत पित कुत हो चट जाहो जिथे जिया हो सी सार नकी वंडी लायत बार पौड़ी आप उपाय मेदनी आपे करदा सार पै बिन परम न कटी ऐ नाम न लगे प्यार सतगुर ते पो उपजे पाइए मोख द्वार पैते सहज पाइए।

पुछो क्या कहिए कहे न कहे आ दूजा। अंधा सोए जे अंध कमावे तिस हृदय से लोचन नाही। मात पिता की रक्तन पन्ने मच्छी मांस ना।

ज्ञान ध्यान कछु सूझै नाही, चतुर कहावै पांडे। मास पुराणी मास कते दी, चहज

तोह्यो अनक मादो कपाहा तोह्यो त्रिपवने गन्ना तोआ आखे हो बहु बेद हच्छा तोए बहुत बिकारा एते रस छोड़।

वेस कर भरम दे बिन सतगुर किने ना पाया देस दसंतर भव थके तुद अंदर आप लुकाया गुर का शब्द रतन है

सुन सुन मंडल लेवलाए अकथ कथा बिचारिय मनसा मनहे समाए उल्ट कमल अमृत पहिया एहो मन कतहो न जाए अजपा जाप ना विसरै आद

अलख अगोचर अगम है गुरमत दिखाई, अंतर अज्ञान दुख परम है गुर ज्ञान गवाई। जिस कृपा करे तिस मेल लह सो नाम तियाई, तू करता पुरख अगम है रविया सब ठाई। जित तू लाहे सच्चिया, तित को लगे नानक गुण गाई। सुद राग मलार पानी।

सौदा कोटवाल सो करासरी सो ऐसा राजा श्री नरहरि जाचे कर कुलाल ब्रह्मा चतर मुख डांवड़ा जिनी बिसव संसार राचीले जाके कर ईश्वर बाबा।

गामत आछे सर्वशास्त्र बहुरूपिया अनगुरुआ आखाड़ा मंडलीक बोल बोले काछे चौर टूल जाचे है पवन चेरी सकत जीत ले पवन अंड टूक जाचे पसमती सो ऐसा राजा तिर पवन पति जाचे कर कुर्मा पाल सहस फनी बासक सेज वालुआ अठारह पार बनास्पति मालनी छिनवे करोड़ी मेघमाला पानी हारिया नख पर सेव जाचे सुरसरी सप्त समुंद जाचे कड़थली एते जी जाचे वर्तनी सो ऐसा राजा तिरपवनी तहनी जाचे कर निकटवर्ती अर्जुन ध्रुव प्रहलाद अम्बरीक नारद ने चै सिद्ध बुद्ध गण गंधर्व वान वह हेला एते जिया जाचे है करी

रहाओ सुरसरी थलाल कृत बारनी रे संत जन करत नहीं पान सुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी मलत नहीं नहें होए कृत बारनी रे संत जन करत नहीं पानंग सुरा अपवित्र नत अवर जल रे सुरसरी मलत ना होए आनंग तर तार अपवित्र कर मानिए रे जैसे कागरा करत विचरानंग भगत भागवत लिखी है तै उपरे पूजिए कर नमस्कारंग मेरी जात कुट बांडला टोर टवंता निथे बनारसी आस पासा अब विपर प्रधान ते है करे डंडौत तेरे नाम शरणाए रविदास दासा मलार हर जपत तेऊ जना पदम कवलास पत तास साम

रहाओ, जाकै भागवत लेखी लेखिए अवर नहीं पेखिए। तास की जात आछोप छिपा, व्यास में लेखिए।

खेल संगत मन कोरा हर रंग पीन रहाओ। हम अचेत अचेत न जान है गत मित गुर किए सुचेत चितेन। प्रभ दीन दयाल कियो अंगीकृत मन हर हर नाम जपेन। हर के संत मिले मन प्रीतम कट देवो हीरा तेन। हर के संत मिले हर मिलिया हम किए पतित पवेन। हर के जन उत्तम जग कहे।

तुम हर सावडे प्रभु स्वामी हम वण जारे रास देन जन नानक को दया प्रभ तारो लद वाखर वाखर हर हर लेन कानड़ा महला चौथा।

बास रहाओ हम हर हृदय जपियो नाम नरहर प्रभ कृपा करी कृपास अनद भया मन बिकसिया उद्दम।

अकिल विखदहन पैखन अंतर टूट गए माया के फास। क्या हम कर्म क्या कर्म कमाव है मूर्ख मुग्ध रखे प्रभतास। अब गनियारे पाथर पारे सत संगत मिल तरे तरास। जेती श्रेष्ठ करी जगदीशर ते सब ऊच हम नीच बख्यास। हमरे अवगन संग गुर मेटे जन नानक मेल लिए प्रभ पास। कानड़ा महला चौथा मेरे मन राम नाम जप्यो गुरवाक। हर हर कृपा करी जगदीशर दुर्मत दूजा पाओ गयो सब चाक। रहाओ नाना रूप रंग हर केरे कट कट राम रव्यो गुप गुपलाक। हर के संत मिले हर प्रगटे उग्र गए भिख्या के ताक। संत जना की बहुत बहुत शोभा जिन उतार्यो हर रसक रसाक। हर के संत मिले हर मिलिया जैसे गऊ देख बछराक। हर के संत जना मैं हर हर ते जन उत्तम जनक जनाक। तन हर हृदय बास बसानी छूट गए मुस्की मुस्काक। तुमरे जन तुम ही प्रभ किए हर राख लिहो आपन अपनाक। जन नानक के सखा हर पाई मात पिता बंदप हर साक। कानड़ा महला चौथा मेरे मन हर हर राम नाम जप चीत। हर हर वसत मायागढ़ वेड़ी गुर के शब्द लियो गढ़ जीत। रहा मिथ्या परम परम बहु परम्या लब्धो पुत्र कलत्तर मोह प्रीत। जैसे सरवर की तुच्छ छाया।

अत्यंतर अस्थिर राम रविया रंग प्रीत हर के संत सता संत जननी के जिन मिलिया मल रंग रंगीत हर रंग ला लहे ना उतरे कबू हर हर जाए मिले हर प्रीत हम बहु पाप किए अपराधी गुर काटे कटत कटीत हर हर नाम दियो मुख औखद जन नाम।

कासट लोह तरे संग साथ। तुम वड पुरख वड अगम अगोचर, हम टूट रहे पाई नहीं हाथ। तू परे परे अपरंपर स्वामी, तू आपन जान है आप जगन्नाथ। अदृष्ट अगोचर नाम त्याए, सत संगत मिल साधु पाथ। हर हर कथा सुनी मिल संगत, हर हर जपियो अकथ कथ काथ। हमरे प्रभ जगदीश गुसाई, हम राख लिहो जगन्नाथ। जन नानक दास दास दासन को, प्रभ करो कृपा राखो जन साथ। कानड़ा महल्ला चौथा पड़ताल कर पंचमा,

जप हर हर शब्द जपीस, हर हो कर पीस रहाओ। हर कृपा कर स्वामी हम लाए हर सेवा, हर जप जपे हर जप जपे, जप जापो जगदीश। तुमरे जन राम जप है ते उत्तम तन को हो कुम कुमे कुम कुम जीस। हर तुम वड वडे वडे वड उच्चे सो करे जे तुद पावसी, जन नानक अमृत पिया गुरमती। तन तन तन तन तन गुरु साबीस। कानड़ा महला चौथा पज रामो मन राम, जस रूप नरेख बडाम। सत संगत मिल पज

एक मन एक चित ते साधु सुख पावे जप हर हर नाम निदान उस्तत करे प्रभ तेरिया मिल साधु साध जना गुर सत।

सतगुर जाको पेटत होए सगल सिद्ध गाय गुण गोपाल कृपा निद दुख विदारण सुख दाते सतगुर जाको पेटत होए सगल सिद्ध रहाओ सिमरत नाम मन्हे साधारे कोट परा दीखन मह तारे जाको चीत आवे गुर अपना ताको दुख नहीं तिल सपना जाको सतगुर अपना राखे सोजन हर रस रसना चाखे कोह नानक गुर कीनी मया हलत पलत मुख उज्जल पया कानड़ा महला पांजमा आराधो तुझे स्वामी अपने उठत बैठत सोवत जागत सास सास सास हर जपने।

ठाकुर पेटे गुरबचनात, सर्व कला कोई परवीन, नाम मंत्र जाको गुर दीन। कह नानक ता

अनेक बार कहे बंदन संतन उहां चरण गोविंद जी के बसना। रहाओ अनेक पांत कर द्वार न पावो, होए कृपालता हर हर त्यावो। कोट कर्म कर दे न सोदा, साध संगत में मन पर बोदा। कृष्ण बूजी बहु रंग माया, नाम लैत सर्व सुख पाया। पार ब्रह्म जब पै दयाल, कह नानक तो छुटे जंजाल। कानड़ा महला पांजमा, ऐसी मांग गोविंद ते। टहल संतन की संग साधु, का हर नामा जप परम गते। रहाओ पूजा चरना ठाकुर सरना, सोई कुशल जो प्रभ जियो करना। सफल होत एह दुर्लभ देही, जाको सतगुर।

संग रंग प्रवत आया, कह नानक तन पूरा पाया। कानड़ा महला पांजमा, भगत भगतन हूं बन आई, तन मन गलत पै ठाकर स्यों, आपन लिए मिलाई रहाओ। गावन हारी गावे गीत, ते उदरे बसे जह चीत, पेखे बिंजन।

जन हर जस सुनत माहो रहाओ मने प्रकाश पेख प्रभ की शोभा जत कत पेखो आयो सब ते परे परे ते ऊंचा गहर गंभीर अथायो ओत पोत मिलो।

कहे वसे सुख थाना बहर नकत हुतायो संत प्रसाद करे कुल लोगा नानक लिपत नमायो कानड़ा महला पांजमा बिसर गई सब ता।

अंजमा हर के चरण हृदय गाए, शीतला सुख शांत मूरत सिमर सिमर नित त्याए। रहाओ सगल

प्रभ चित आए, संतन के आनंद हे नित हर गुण गाए रहाओ। ऊचे ते नीचा करे नीच खिन महथापे, कीमत कही न जाई।

मन खटोर तेरा विश्वास तू महा उदमाता करका पैखर दो छोटे जे ऊपर लादा रहो जब तब संजम तुम खंडे जम के दुख ढांड सिमरो नाही जोन दुख लज्जे पांड हर संग सहाई महामित सो तेरा पेर बीदा पंच बटवारी उपजो महा खेर नानक तिन संतत शरणागति जिन भन बस कीना तन तन सर्वस आपना प्रभ जन को दीना बलावल महला पंजवा उद्यम करत आनंद प्या सिमरत सुख सार जप जप नाम गोविंद का पूरण बेचार चरण कमल गुर के जपत जप हो जीवा पार ब्रह्म आराध ते मुख अमृत पीवा रहाओ जी जंत सब सुख बसे सब के मन लोच परोपकार नित चित दे नाही कुछ पोच तन सो थान बसंत तन जपिए नाम कथा कीर्तन हर अतकना सुख सहज विश्राम माना कदे न विसरे मनते कदे न विसरे अनाथ कुनाथ नानक प्रभ शरणागति जाके सब किछ हाथ बलावल महला पंजवा जिन तू बंद कर छोड़या फुन सुख मह पाया सदा सिमर चरनार बिंद शीतल होताया जीवता अथवा

पूरे हो सर्वत्र मैं प्रभ गुणी गहीर, नानक भगत आनंद मैं पेख प्रभ की तीर। बलावल महला पंजवा। अरदास सुनी दातार प्रभ होए कृपाल, राख लिया अपने सेव को मुख निंदक छार। तुझे न जो हो को मित जन तू गुर।

सेवा न लगाई पार ब्रह्म शरणाई, जो फिरद हमारे रामकार दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई, राम नाम औखत दिया ए काल बुलाई रहो। राख लिए तिन रखन हार, सब व्याध मुटाई,

गावत बोलत बोल अजाय रहा, सेवत सेव सेव सद सेवो सदा करो किरताए, अभय दान पावो पुरख दाते मिल संगत हर गुण गाए, रसना अगह गा गुण राती नैन दर्श रंग लाए, हो कृपाल दीन दुख भंजन बो चरण हृदय वासाए, सब हूँ तले तले सब ऊपर ए दृष्ट दृष्टाए, अभिमान खोए खोए खोए हुई ओ ब्योको सतगुर मंत्र दृढ़ाए, अतुल अतुल अतुल नह तुल्य भक्त बछल कर पाए, जो जो सदन पर्यो गुरु नानक अपैदान सुख पाए, बलावल महला पंजवां। प्रभु जी तू मेरे प्राण अधारे, नमस्कार दंडौत वंदना अनक बार जाओ वारे रहो, उठत बैठत सोबज जागत एह मन तुझे चितारे, सुख दुखे मन की बिरथा तुझ ही आगे सारे, तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही, तुम्ही मेरे परवारे, जुन तुम करो सोई हम जो तुम करो सोई पर हमरे, पेख नानक सुख चरनारे, बलावल महला पंजवा। सुनियत प्रभ तो सगलो धारण, मोह मगन पतित संग प्राणी, ऐसे बने वसारण रहो, संच बिखिलिया ग्रह ग्राहज कीनी, अमृत मन ते डारण, काम क्रोध लोभ रत निंदा सत संतोख विदारण, इनते काढ़ ले हो मेरे स्वामी हर परे तुम सारण, नानक की बेनंती प्रभ प्रसाद संग रंग तारण, बलावल महला पंजवा, संतन कैसो

कोट जन्म की तृष्णा निवरी राम रसायन आत्म त्राप चरण गए शरण सुख दाते गुर के बचन जपे हरे आप सागर तरे परम पैविन से कहो नानक ठाकर प्रताप बलाबल महला पंजवा ताप लहाया गुर सिरजन हार सतगुर अपनो को बल जाय जन पैज रखी सारा संसार रहो कर मस्तक धार बालक रख लीनो प्रभ अमृत नाम मारस दीनो दास की लाज रखे मेहरबान गुरु नानक बोले दर गए परवान राग बलावल महला पांजवा चौपदे दो पदे कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सतगुर शब्द उजारो दीपा विनस्यो अंधकार तह मंदर रतन कोठड़ी खुली अनूपा रहाओ विसन विसम पय जो पेखो कह न जाई वड्याई मगन पय ऊहा संग माते ओत पोत लपटाई आज जंजाल नहीं कुछ जंजारा अहमद नहीं पोरा ऊचन ऊचा बीच न कीचा हो तेरा तू मोरा एक अंकार एक पसारा एकाय अपर अपारा एक वस्थिरन एक संपूर्ण एकाय प्राण अधारा निर्मल निर्मल सूचो सूचो सूचो सोचा सूचा अंतना अंता सदा बे अंता कहो नानक ऊंचो ऊंचा बलावल महला पांजवा बिन हर काम न आवत है जासे उराच माच तुम लागे ओह मोनी मोहावत है रहो कनक कामनी सेज सोहनी छोड़ खिने मैं जावत है उर्जर हो इंद्री रस प्रेरियो बिखे ठगारी खावत है त्रिनको मंदर साज सवार्यो पावक तदे जरावत है ऐसे गढ़ में आठ हठीलो फूल फूल क्या पावत है पांच दूत मूड पर ठाडे पांच दीत मूड पर ठाडे केस करे फहरावत है दृष्ट न आवे अंध अज्ञानी सोए रहे मद बावत है जाल पसार चोग बिस्तारी पंखी ज्यों पहावत है कह नानक बंधन काटन को मैं सतगुर पुरख ते आवत है बलावल महला पांजवा हर हर नाम अपार मोली प्राण प्यारो बने अधारो चीत चित भोजै से पान तमोली रहाओ सहज समाया गुरु बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली प्रिय मुख लागो जो बड़ पागो सुहाग हमारो कतो न डोली रूप न धूप न गंध न दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली कहनन प्रिय रवि सुहागन अतनी की मेरी बनी खटोली बला

पूर्ण पूरे होसम पूर्ण शीतल शांत दयाल दई काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तंते होए सगल खई सत संतोख दया धर्म सुख संदन संतन के अमत लई कह नानक जिन मन उपछानिया तिनको सगली सोज पई बलावल महला पंजवा क्या हम जीव जंत बेचारे वर्ण साका एक रुमाई ब्रह्म मेच सिद्ध मुन इंद्रा बेअंत ठाकर तेरी गत नहीं पाई क्या कथिए किच कथन।

राखे अपने को काहू न करते कछ खीना। बल जावो दर्शन साधु के जय प्रसाद हर नाम लीना। कहो नानक ठाकुर परोसए कहे न मान्यो छन मन छीना। बलावल महला पंजमा गुरपुरे मेरी राख लई अमृत नाम निरह मैं दीनो। जन्म जन्म की मैल गई रहो निवरे दूत।

आप त्याग पर ये नित सरणी गुरते पाइये ओ नदान जन्म मरण की कठिए फांसी साची दरगह का निशान जो तुम करो सोई पल बानो।

तय करे रजंगा कबु न बिसरे ही अमोरे ते नानक दास ही दान मंगा। बलावल महला पंजमा अचुत पूजा जोग गोपाल मंतन अर्प रखे हरियागे सर्ब जिया का है प्रतपाल रहो। सरन समरथ कत सुखदाता कृपा सिंध बड़ो दयाल कंठ लाए राखे अपने को तिसको लगे न ताते वाल। दामोदर दयाल स्वामी सर्बस संत जना तनवाल नानक जाके दर्श प्रभ मांगे संत जना की मिले रवाल। बलावल महला पंजवा सिमरत नाम कोठ जातन पाए साध संग मिल हर गुण गाए।

जन की टैल संभाखन जन से उठन बैठन जन के संगा जन चर रज मुख माते लागी आशा पूर्ण अनंतरंगा जन पार ब्रह्म जा की निर्मल में मां जन के चरण तीर्थ कोट गंगा।

चरण कैसे करो अनुग्रह पतत उदाहरण राख स्वामी आप परोसे रहो सिमर नहीं आवत फित मद मावत बिख्या राता स्वान जैसे औद बिहावत अधिक महावत पाप कुमावत बुढ़े ऐसे सर्ण दुख भंजन पुरख निरंजन साधु संग तरवण जैसे केशव कलेश नास अखंड नानक जीवत दर्श दिसे।

कहां ब्यो तीर्थ वर्त की ने राम शरण नहीं आवे जोग जग ने फल तहबाने जो प्रभ जस विसर आवे मान मोह दोनों कर पर हर गोविंद के गुण गावे कहो नानक के विद को प्राणी जीवन मुक्त कहावे बलाबल महला नौवा जा मैं भजन राम को नाही तह नर जन्म अकारथ होया जय राखो मन माही राव तीर्थ करे बर्त फुन राखे न मनुआ बस जाके नेफल तरम तह तुम मानो साज कैत मैं जाको जैसे पाहन जल में राख्यो पीते नहीं तय पानी तैसे ही तुम ताहे पछानो भक्तहीन चो प्राणी कल मैं मुक्त राम ते पावत गुरजा भेद बतावे कहो नानक सोई नर गरुआ जो प्रभ के गुण गावे बलावल अष्टपदिया महला पहला कर दसम इको अहंकार सतगुर प्रसार निकट वसे देखे सब सोई गुरमुख बिरला बूझे कोई बिनपा पाइये भगत न होई शब्द रते सदा सुख होई ऐसा ज्ञान पदार्थ नाम गुरमुख भाव सरस रसमान राव ज्ञान ज्ञान कथे सब कोई कथकथ बाद कहे दुख होई कथकथ ने ते रहे न कोई बिन रसरा ते मुक्त न होई ज्ञान ध्यान सब गुरते होई साची रहत सचा मन सोई मनमुख कथनी है पर रहत न कोई नाबो पूले था न कोई मन माया बंदेव सरजाल कटकट ब्यापरे हो बिखनाल युवा जे चौधी से काल कारज सी दौर रे समाल सो ज्ञानी जिन शब्द लिबलाई मनमुखियो में पत गवाई आपे करता भगत कराई गुरमुखे आपे दे बड़ियाई रहना धारी निर्मल जोत ना बिना झूठे कुचल कछोत वेद पकारे भगत सरोत सुन सुन माने बेखे ज्योत साह सिम नाम दृढ़ मारंग गुरमुख शांत ऊतम काराम मनमुख जोनी दुख सहामंग बंधन टूटे एक नाम विसामंग मन्ने नाम सची मत पूजा किस बेखा नाही को दूजा देखो पावे मन सोई नानक कहे अवर नहीं कोई बलावल महला पहला मन का केहा मनसा करे एह मन पुन पाप उचरे माया मद माते तृप्त नावे तृप्त मुक्त मनसा चा पावे तन तन कलत सब देखा अभिमाना बेना में किछ संग न जाना रहो कीचा रस भोग खुशियां मन केरी तन लोका तन भस्मे ढेरी खाकू खाक रडे सब फैल बिन सब दे नहीं उतरे मैल गीत राग कर ताल सकूरे त्रहगुण उपजे बिन से दूरे दूजी दुर्मत दर्द न जाए छूटे गुरमुख दारू गुण गाए तोती यो जल तिल कलमाला अंतर क्रोध परे नाट छाला नाम सार माया मद पिया बिन गुर भक्त नाही सुख धिया सूकर स्वान घर दम अजारा पशु मलेच नीच चंडारा गुरते मुँह फेरे तिन जोन पवाइये बंधन बाध्या आइये जाइये गुरसेवा ते लहे पदार्थ हृदय नाम सदा किरतार्थ साची दर कह पूछना होए माने हुक्म सी जे दर सोए सतगुर में देता किसको जाने रहे रजाई हुक्म पछाने हुक्म पछाण सच्चे दरवास काल विकाल शब्द पय नास रहे अतीत जाने सब तिसका मंतन अर्पे है जिसका ना हो आवे ना हो जाए नानक साचे साच समाए बलावल महला तीजा अष्टपदी कर दसम इको अहंकार सतगुर प्रसाद जग कौआ मुख चुंच ज्ञान अंतर लोभ झूठ अभिमान बिना में पैजल हग निदान सतगुर सेव नाम बसे मन चीत गुर भेटे हर नाम चितावे बिना में हुर झूठ परीत राव गुर कहा सो कार कमावो शब्द इन सहज करे आवो साचे नाय विरडाई पावो अपन बूझे लोक बजावे मन का अंधा अंध कमावे दरकर मैल ठौर कैसे पावे हर जी उसे भी ये अंतर जामे कटकटे अंतर जिसकी ज्योत समाने तिस नाल किया चले पहनामे साचा नाम सचे शब्द जाने आपे आप मिले चूके अभिमाने गुरमुख नाम सदा सदा बखाने सतगुर सेविये दूजी दुर्मत जाई औगुण काट पापा मत खाए कंचन काया ज्योति ज्योत समाई सतगुर मिलिये वड्डी वड्याई दुख काटे हृदय नाम बसाई नाम रते सदा सुख पाई
ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਨਿਆ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਾਰ, ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਨਿਆ ਮੋਖ ਦੁਆਰ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮਤਿ ਮਾਨਿਆ ਪਰਵਾਰ ਐਸਾ ਦਾਰ। ਬਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਘਰ ਗਿਆਰਵਾਂ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਆਪੇ ਆਪ ਖਾਏ ਹੋ ਮੇਟੇ ਅੰਦਿਨ ਹਰਸ ਗੀਤ ਗਵਈਆ, ਗੁਰਮੁ ਪਰਚੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ, ਨਿਰਭਉ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਮਲਈਆ, ਮੈਂ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਰਮਈਆ, ਖਿਨਪਲ ਰਹਿ ਨ ਸਕੂ ਬਿਨ ਨਾਮੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਹਰ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਈਆ, ਰਹੋ ਇਹ ਗ੍ਰਹੋ ਦਸ ਦੁਆਰ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਇਨਸ ਤਸਕਰ ਪੰਚ ਚੋਰ ਲਗਈਆ, ਧਰਮ ਅਰਥ ਸਭ ਹਿਰ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਮਨਮੁਖੇ ਅੰਧੇ ਖਬਰ ਨ ਪਈਆ, ਕੰਚਨ ਕੋਟ ਬੋ ਮਾਣਕ ਭਰਿਆ, ਜਾਗੇ ਗਿਆਨ ਤਿਤਲ ਵਲਈਆ, ਤਸਕਰ ਹੇ ਰੂ ਆਏ ਲਕਾਨੇ, ਗੁਰ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪਕੜ ਬੰਧ ਪਈਆ, ਹਰ ਨਾਮ ਪੋਤ ਬੋਹਿਤਾ, ਖੇਵਟ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਪਾਰ ਲੰਘਈਆ, ਜਮ ਜਗਾ ਧੀ ਨੀੜ ਨਾ ਆਵੇ, ਨਾ ਕੋ ਤਸਕਰ ਚੋਰ ਲਗਈਆ, ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਦਾ ਰਨ ਰਾਤੀ, ਮੈਂ ਹਰ ਸਹਿ ਤੇ ਅੰਤਨ ਲਈਆ, ਗੁਰਮੁਖ ਮਨੂਆ ਇਕਤ ਕਰੇ ਆਵੇ, ਮਿਲੋ ਗੋਪਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵਜਈਆ, ਨੈਨੀ ਦੇਖ ਦਰਸ ਮੰਤ੍ਰਿਪ ਤੇ ਸਰਵਣ ਬਾਣੀ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣ।

देश पर समकर जाने नदरे आवे सब ब्रह्म तसरिया। राम नाम है जोत सवाई गुरमुखे आपे अलख लखैया, नानक दीन दयाल पाए है भगत पाए हर नाम समैया। बलावल महला चौथा हर नाम सी तर जल ते आवो, हर चंदन बास सुगंधक जैया। मिल सत्संगत परम पत पाया मैं हिरण पलास संग हर भैया। जब जगन्नाथ जुगजी सुख सैया सन परे से जन उभरे ज्यो प्रहलाद उधार समैया। रहाओ भार उठारा मैं चंदनी उत्तम चंदन निक सब चंदन हुईया। साकत कूड़े सब सुख हुए बन अभिमान बिछड़ दूर गैया। हर गतबत करता है आपे जाने सबित हर हर आप बनैया। जे सतगुर भेटे सो कंचन होवे सो तुर लिखे आसो मेट न मिटिया। रतन पदार्थ गुरमत पावे सागर भक्त भंडार खुलैया। गुरचरणी इक सरदा उपजी मैं हर गुण कहते तृप्त न पैया। परम बैराग नित नित हर त्याए मैं हर गुण कहते भावनी कहिया। बार बार खिन खिन पल कहिए हर पार न पावे परे परैया। शास्त्र वेद पुराण पकारे धर्म करो खट कर्म दृढ़ैया। मनमुख पाखंड परम बगूते लोभ लैर डा भार बुढ़ैया। नाम जोपो नामे गत पावो सिमर सातर नाम दड़ैया। होमे जाए त निर्मल होवे गुरमुख परचे परम पद पैया। एहो जग वरण रूप सब तेरा जित लावे सो कर्म कमैया। नानक जंत बजावे बाजा जित पावे तित रहा चलैया। बलावल महला चौथा गुरमुख अगोचर त्याया हूं बलबल सतगुर सतपुरखैया। राम नाम मेरे प्राण बसाए सतगुर परस हर नाम समैया। जन की टेखर नाम टकैया सतगुर की तर लागै जामै गुर कृपा ते हर दर रहिया। रहाओ ए शरीर कर्म की धरती गुरमुख मत मत तत कढैया। लाल जवे हर नाम प्रगासया भांडे पाओ पते तैया। दासन दास दास हो रही है जो जो नाम भगत ने जपैया। मन बुद्ध अर्पत रोक रे आगे गुर प्रसादी मैं कथ कथैया। मन मुख माया मोह व्यापे एवं तृष्णा जल तखैया। गुरमत नाम अमृत जल पाया अगन बुझी गुर शब्द बजैया। एहो मन नाचे सतगुरे आगे अनद शब्द तंतूर बजैया। हर अस करे दिन राति रख रख चरण हर ताल परैया। हर के रंगरता मन गावे रसर साल दर शब्द गुवैया। निजगर तार चवाए अत निर्मल जन पिया तिन ही सुख लैया। मन हट कर्म करे अवमानी ज्यो बालक बालू करो सरैया। आवे लैर समुद्र सागर की खिन मैं भिन भिन टह पैया। हर सर सागर हर है आपे जग है सब खेल खलैया। ज्यो जल तरंग जल जले समावे नानक आपे आप रमैया। बलावल बलाहला चौथा सतगुर पर चे मन मुंदरा पाए गुर का शब्द दिन पसंदड़ैया। अमर पिंड पै साधु संग जन्म मरण दो मिट गैया। मेरे मन साध संगत मिल रैया कृपा करो मधुसूदन माधो मैं खिन खिन साधु चरण पखैया। रहाओ तदे ग्रिस्त भया बन वासी खिन मनुआ टिके ना टकैया। धावताए तदे कर आवे हर हर साधु शरण पवैया। धिया पूत छोड़ सने आसी आसा आसमान बात करैया। आसा आस करे नहीं बूझे गुर के शब्द निराश सुख लैया।

ऐं खिन पल रह न सघ उबिन पुरी तव जे उबिन अमदे अमदी भर गई आहे जिनको प्यास हुई प्रभ केरी तिन अवर न पावे बिन हर कोद हुई आहे कोई आन आन मेरा प्रभु मुलावे हों तस बिटो बल बल घुम गई आहे अनेक जन्म के पिछड़े जन्म मेले ता सत सत सत गुर सरण पई आहे सेज एक एको प्रभु ठाकर महल न पावे मन मुख परमैया गुर गुर करत सरण जो आवे प्रभ आए मिलेखन ढीर न पईया कर कर किरिया चार बधाए मन पखंड कर्म कपटलो भैया बेसुआ के कर पेटा जन्मया पिता ता है क्या नाम सदैया पूर्व जन्म भगत कर आए गुर हर हर हर हर भगत जमैया भगत भगत कर ते हर पाया जा हर हर हर हर नाम समैया प्रभ आन आन मेहंदी पैसाई आपे घोल घोल अंगलैया जिन को ठाकर कृपा तारी बहा पकर ना

सोहन प्रवान सदरी गर्म सवन कथ खाई उत पाए नानक गया कर्म खंड का एहो ज्ञान खंड का इत पौन पानी वह संतर इत

निर्भव निर्वय अकाल मूर्त अजुनी सैगम गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होशी।

अशांत मूर्ख अंध घोर अशांत चोर राम अशांत अमर कर जाए अशांत गड़बड़ हृदय रखवाए अशांत पापी पाप अशांत नूरे आए सुधाए अशांत मलेच मार पाए अशांत निंदक करे नानक नीच कहे क्या मारे न जाना एक जो तुम पावे सही परिपाटी सदा सलामत संत नाम संत नाम राम राम संत लो संत कहें कृपा।

सिमरत साधु संग पतत पनीत होहे खिन पीतर पार ब्रह्म कह रंग। जो जो कथा सुनाए हर कीर्तन ताके दुर्मत नास सगल मनोरथ पावे नानक पूर्ण होवे आस। कानड़ा महला पंजवा साध संगत निध हर को नाम संग सहाई जी कै काम रहाव। संतरेन नित मजन कराए जन्म जन्म के किल बिखराए संत जना की ऊंची वाणी सिमर सिमर तरे नानक प्राणी। कानड़ा महला पंजवा साधु हर हरे गुण गाए मान तन धन प्राण प्राप के सिमरत सुख दुख जाए रहाओ। ईत ऊत कहा लो भावे एक सिओ मन लाए महापवित्र संत आसन मिल सांग गोबिंद त्याय। सगल त्याग सरण आयो नानक लेहो मिलाए कानड़ा महला पंजवा। पेख पेख बिगसाओ साजन प्रव्या अपनाई कांत रहाओ। आनंदा सुख सहज मूर्त तिसान नहीं पांत सिमरत एक बार हर हर मिट कोट कसमर जांत। गुण रमंत दुख ना सह रिद भयंत सांत अमृता रस पियो रसना नानक हर रंग रात। कानड़ा महला पंजवा साजना संत आओ मेरा रहाओ। आनंद गुना गाए मंगल कसमला मिट जाहे परे रै संत चरण धरो माथे चांदना अंग्रे होए अंधेरा। संत प्रसाद किमल कमल बिकसै गोविंद भजो पेख नेरा प्रभ कृपा ते संत पाए वार वार नानक बेरा। कानड़ा महला पंजवा चरण सरण गोपाल तेरी मोह मान तो परम राख लीजै काट बेरी रहाव। बूढ़त संसार सागर उदरे हर सिमर रत्नागर शीतला हर नाम तेरा पूर्णो ठाकुर प्रभ मेरा। दीन दर्द निवार तारण हर कृपा निध पतत उदारण कोट जन्म दुख कर पायो सुखी नानक गुर नाम दृढ़ायो। कानड़ा महला पंजवा तानो प्रीत चरण संग लागी कोट जाप ताप सुख पाए आए मिले पूर्ण बड़भागी रहाव। मोहे अनाथ दास जन तेरा अवर ऊट सगली मोह त्यागी पोर परम काटे प्रभ सिमरत ज्ञान अंजन मिल सोवत जागी। तू अथावत बड़ो स्वामी कृपा सिंध पूर्ण रतनागी नानक जाचक हर हर नाम मांगे मस्तक आन धन्यो प्रभ भागी। नानक जाचक हर हर नाम मांगे मस्तक आन धर्यो प्रभ भागी। कानड़ा महला पंजवा कुचिल कठोर कर कपट कामी ज्यो जान त्यो तार स्वामी रा तू समरथ सरण जोग तू राख अपनी कर तार जाप ताप नेम सुज संयम नाही इन विदेश उटकार गर्त घोर अंध ते काडो प्रभ नानक नदर निहार। कानड़ा महला पंजवा घर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नारायण नरपत नमस्कार ऐसे गुर को बल बल जाइए आप मुक्त मोहतार रहाओ। कमन कमन कमन गुन कहिए अंत नहीं कछ पार लाख लाख लाख कई को रै को है ऐसो विचार। विषम विषम विषम ही पई है लाल लाल रंगार कौ नानक संतन रस्याई है ज्यों चाक गूंगा मुस्कार। कानड़ा महला पंजवा ना जानी संतन प्रभ ज्ञान ऊच नीच सब पेख समानो मुख बकनो मन मान रहाव। घट घट पूर रहे सुख सागर पै पंजन मेरे प्राण मन है प्रगास भयो प्रमनास्यो मन

खंडड़ा महला पंजवा। कहन कहा मन कौ कई केता है, ऐसो जन बिर लोहा सेवक जो तत जोग कौ बेत रहा। दुख नाही सब सुख ही है रे, कहे की नेता है, बुरा पड़ा नहीं सब पड़ा ही है रे, हार नहीं सब जीता है। सोग नाही सदा हर की है रे, छोड़ना ही किच लेता है, कौ नानक जन हर हर हर है, कत आव है कत रमत। कानड़ा महला पंजवा। ही एको प्रीतम बिसर न जाए, तन मन गलत भय ते संगे, मोहनी मोह रही मोरी माए रहा। जय जय पह कहो वृथा कहो अपनी, जय जय पह कहो वृथा हो अपनी, तेऊ तेऊ गहे रहे अटकाए, अनेक भान की एक जाली ताकि गंठ नहीं छोराए। फिरत फिरत नानक दास आयो, संतन ही सरनाए, काटे ज्ञान परम माया लियो कंठ लगाए। कानड़ा महला पंजवा। आनंद रोग विनोद हमारे, नामो गावन नाम ते आवन, नाम हमारे प्राण आधार रहा। नामो ज्ञान नाम स्नाना, हर नाम हमारे कार्य सवार, हर नामो शोभा नाम बढ़ाई, भोजड़ बिकम नाम हर तार। अगम पदार्थ लाल अमोला, पयो प्राप्त गुर चरनार, कौ नानक प्रभय कृपाला, मगन पय ही रह दरसार। कानड़ा महला पंजवा। साजन मीत स्वामी नेरो, पेकत सुनत सबन कै संगे, थोरे काज बुरो कै फेरो, रहा नाम बिना जे तो लपटायो, कछु नाही नाही कछ तेरो, आगे दृष्टावत सब प्रगट, इहां मोहयो परम अंधेरो। अटक्यो सतमनता संग माया, देवन हार दा तार बिसेरो, कौ नानके को पारो, सौ बंधन काटन हार गुर मेरो। कानड़ा महला पंजवा। बिखय दल संतन तुम्हारे गाहयो, तुमरी टेक भरोसा ठाकुर, शरण तुम्हारी आहयो रहाओ। जन्म जन्म के महापराच, दर्शन पेट मिटाहयो, पयो प्रगास आनंद जियारा, सहज समाध समाहयो। कौन कहे तुम से कछ नाही, तुम समरथ अथाहयो, कृपा निधान रंग रूप रस, नाम नानक लै लाहयो। कानड़ा महला पंजवा। बूढ़त प्राणी हर जप धीरै, बिन सह मोह परम दुख पीरै, रहाओ सिमरो दिन रैन गुर के चरना, जत कत पेखो तुमरी सरना। संत प्रसाद हर की गुन गाया, गुर भेटत नानक सुख पाया। कानड़ा महला पंजवा। सिमरत नाम मन है सुख पाइया, साध जना मिल हर जस गाइया, रहाओ कर कृपा प्रभु हृदय बसेरो, चरण संतन कै माथा मेरो। पार ब्रह्म कौ सिमरो मना, गुरमुख नानक हर जस सुना। कानड़ा महला पंजवा। मेरे मन प्रीत चरण प्रभ प्रसन्न, रसना हर हर भोजन तृप्तानी, अखियन कौ संतोख प्रभ दर्शन रहाओ। करणन पूर रहो जस प्रीतम, कलमल दोग सगल मल हरसन, पावन तावन स्वामी सुख पंथा, अंग संग काया संत सरसन। शरण गही पूर्ण अविनाशी, आनुपाव थकत नहीं करसन, कर गह लिए नानक जने अपने, अंध घोर सागर नहीं मरसन। कानड़ा महला पंजवा। कोह कत कपट खपट खलक गरजत, मरजत मीच अनेक बरिया रहा। कोह कत कपट खपट खल गरजत, मरजत मीच अनेक बरिया रहा। अहं मत अनरत कुमित हित, प्रीतम पेखत प्रमत लाख गरिया। अनित व्यवहार चार विदहीनत, मम मद मात को पजरिया, करणु कृपाल गोपाल दीन बंद, नानक उदर सरन परिया। कानड़ा महला पंजवा। जे प्राण मान दाता, हर बस बिसरते ही हान रहाओ, गोबिंद त्याग ज्ञान लाग गए, अमृत ओडार भूम पा गए, बिखेरा सेवास कत मूड़े काहे सुख मान। काम क्रोध लोभ व्याप्यो जन्म ही तिखान, पदत पावन सरनायो उदर नानक जान। कानड़ा महला पंजवा।
अविलोको राम को मुखार बिंद खोजत खोज रतन पायो बिसरी सब चिंद रहाव चरण कमल हृदय तार उतरिया दुख मंद राज धन परिवार मेरा सर्व सो गोविंद साध संगम लाभ पायो नानक फिर नमरंद कानड़ा महला पंजवा घर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद प्रभ पूज्यो नाम राध गुर सतगुर चरनी लाग हर पावो मन पावो मन अगाध जग जीतो हो गुर कृपाद रहाव अनेक पूजा मैं बोबित खोजी सा पूजा जे हर पावास माटी की है पुत्री जोरी क्या है कर्म कमास प्रभ बाह पकड़ जिस मार्ग पावो सो तुद जंत मिलास अवर ओट मैं कोई न सूझ एक हर की ओट मैं आस क्या दीन करे अरदास जो सब घट प्रभु निवास प्रभ चरणन की मन प्यास जन नानक दास कहियत है तुमरा।

जगत उदाहरण नाम प्रीति रय नाम निध नाम निदान हर की रय हर रंग रंग रंग अनूपी रय काहि रे मन मोहि मग्नि रय नैनों देख साध दर्शी रय सो पावै जिस लिखत लीले रय रहाओ सेवो साध संत चिर निरय बांछो धूर पवित्र करी रय अठसठ मजन मैल कटेर सास सास्ते आवो सास सास्ते आवो मुख नहीं मोरै कि संग न चाल लाख करो रै प्रभ जी को ना

दर्शन प्यास बहुत मन मेरा मिल नानक देव जगत गुर की रै। कानड़ा महला पंजवा ऐसी कौन विदे दर्शन परसना रहाओ आस प्यास सफल मूर्त उमग ही ओ तरसना दीन लीन प्यास मन संतना हर संतना हर संतना की रेन ही ओ अर्प देन प्रभ पय है कृपेन मान मोहते आग छोड़ो तो नान घर जियो पेटना। कन्नड़ा महला पंजवा रंगा रंग रंगन के रंगा कीट हस्त पूर्ण सब संगा रहाओ व्रत नेम तीर्थ सहित गंगा जल हेवत भूख यार नंगा पूजा चार कल्त में लंगा चक्र कर्म तिलक खाटंगा दर्शन पेट है बिन सतसंगा हठ निगरह अत रहत बिटंगा हो रोग व्यापै चुका न पंगा काम क्रोध अतृसन जरंगा सो मुक्त नानक जिस सतगुर चंगा। कानड़ा महला पंजवा घर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद देख बूझ गई गई मेर साध जना पंच भागे चोर सहजे सुख है नो हरे गुण गावती गावती गावती दर्श प्यार रहाओ जैसी करी प्रभ मोस्यो मोस्यो ऐसी हो कैसे करो हियो तुम्हारे बल बले बल बले बल गई पहले पैसंत पाए त्याए त्याए प्रीत लाए प्रभ थान तेरो केहरो जित जंतन कर विचार अनेक दास कीरत करह तुहारी सोई मिल्यो जो भाव तो जन नानक ठाकुर रहो समाए एक तू ही तू ही तू ही। कानड़ा महला पंजवा घर अठवा।

हर संत मंत गोपाल ज्ञान ध्यान हृदय गोविंद गाए चरण कमल प्रीत लाए दीन दयाल मोहना कृपाल दया मया तार नानक मंगे नाम दान ताज मोह परम सगल अभिमान कानड़ा महला पंजवा प्रभ कहन मलन दहन लहन गोर मिले आन नहीं उपाओ रहाओ तटन खटन जटन होम नाही डांड तार सुवाओ जतन पांतन तपन प्रमन अनेक कथन कथते नहीं थान पाई ठाओ सोध सगर सोधना सुख नानका भजनाओ कानड़ा महला पंजवा घर नौवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पतत पावन भगत बछल पै हरन तारन तरन रहाओ नैन तिपे दर्श पेख जस तोख सुनत करन प्राण नाथ नाथ दाते दीन गोविंद सरन आस पूर्ण दुख विनाशन गई ओट नानक हर चरण कानड़ा महला पंजवा चरण सरन दयाल ठाकुर आण नाही जाए पतत पावन बिर स्वामी उदर ते हर त्याए राव सहसार गार विकार सागर पतत मोह मान अंध बिकल माया संग तंद कर गहे प्रव्याप काडो राख लियो गोविंद राय अनाथ नाथ सनाथ संतन कोट पाप विनाश मन दर्शन की प्यास प्रपूर्ण गुणतास कृपाल दयाल गोपाल नानक हर रसना गुण गाय कानड़ा महला पंजवा वार वारो अनेक डारो सुख प्रे सुहाग पलक रात रहाओ कनक मंदर पाठ से सखी मोह नाहे इन स्योतात मुक्त लाल अनेक भोग बिन नाम नानक हाथ रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रे संग सुख बिहात कानड़ा महला पंजवा अहंकोरो मुख जोरो गुर गुर करत मन लोरो प्रिय प्रीत प्यारो मोरो गृह से सुहावी आगन चैना तोरो री तोरो पंच दूतन स्यो संग तोरो आए न जाए बसे निज आसन ऊंद कमल बिगसोरो छुटकी हो मैं सोरो गायो री गायो प्रभ नानक गुनी गहेरो कानड़ा महला पंजवा घर नौवा तां ते जाप मना हर जाप जो संत वेद कहत पंथ गा करो मोह मगन अहंताप रहा जो राते माते संग बपुरी माया मोह संताप नाम जपत जो सो जन उदरै जिसे उधारो आप बिन सजाए मोह पै परमा नानक संत प्रताप कानड़ा महला पंजवा घर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद ऐसो दान देहो जी संतो जात जियो बलिहार मान मोही पंच दोही उर्ज निकट बस्यो ताकि सरन साधुआ दूत संग निवार रहाओ कोट जन्म जून प्रम्यो हार पर्यो द्वार कृपा गोविंद पई मिल्यो नाम आधार दुर्ब जन्म सफल नानक पाव उतार पार कानड़ा महला पंजवा घर यारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद सहज सुभाए अपनाए कछु न जानो कछु दिखाए प्रभ मिल्यो सुख बाले भूले रहाओ संजोग मिलाए साथ संगाए कतो न जाए करे बसाए गुण निदान प्रगटे हुए चोलाए चरण लुवाए अंत जाए थान थनाए सर्व समाए रसक रसक नानक गुण बोले कानड़ा महला पंजवा गोविंद ठाकुर मिल दुराई परमित रूप गमे गोचर रहे हो सर्व समाई रहाओ कहन भवन नाही पायो पायो अनेक उक्त चतुराई जतन जतन अनेको पावरे तो मिल्यो जो कृपाई प्रभु दयार कृपार कृपा निद जन नानक संतरे नाई कानड़ा महला पंजवा माई सिमरत राम राम राम प्रभ बिना नाही होर चितवो चरनार बिंद सासन निसपोर रहा लाए प्रीत कीन आपन टूटत नहीं जोर प्राण मान तन सर्वसो हर गुण निदे सुख मोर ईतूत राम पूर्ण निरखत रिद खोर संत सरन तरन नानक
बिनस्यो दुख घोर। कानड़ा महला पंजवां। जान को प्रभ संगे स्नेहो साजनो तू मीत मेरा गृह तेरा सब के हो रहाओ। मान मांगो तान मांगो धन लक्ष्मी सुत दे मुक्त जुगत भुगत पूर्ण परमानंद परम निदान। पाए पाए भगत निहाल नानक सदा सदा कुर्बान। कानड़ा महला पंजवां। करत करत चर्च चर्च चर्चरी जोग ध्यान पे ज्ञान फिरत फिरत तरत तरत तरचरी राव। अहं अहं अहय अवर मूड मूड।

हरे पाज कहत नानक सुनो रे मूड बिन भजन भजन भजन अहला जन्म गई। कानड़ा अस्पदिया महला चौथा घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद जप मन राम नाम सुख पावे गो जो जो जपति वै सुख पावे सतगुर सेव समावे गो राव भगत जना की खिन खिन लोचा नाम जपत सुख पावे गो अन रस साध गए सब निकर बिन नावे किछ न सुखावे गो गुरमत हर हर मीठा लागा गुर मीठे बचन कढावे गो सतगुर बाणी पुरख पुरखो तुम बाणी स्यो चित लावे गो गुरबाणी सुनत मेरा मन द्रव्या मन पीना निज कर आवे गो मह तह अनहत धुनी बाजे नित बाजे निज अरधार चुआवै गो राम नाम एक तिल तिल गावै मन गुरमत नाम समावै गो नाम सुनै नामो मन पावै नामै ही तृप्तावै गो कने कनक पैरै बो कंगना का पर भांत बनावै गो नाम बिना साफी ठिकाने जन्म मरै फिर आवै गो माया पटल पटल है भारी कर घूमन घेर कुलावै गो पाप विकार मनुआ पाप विकार मनूर सब भारे बिख दुसर सरयो ना जावै गो पौ बैराग भया है बोहित गुरखेवट सब सितरावै गो राम नाम हर पेटी है हर रामै नाम समावै गो अज्ञान लाए सवालिया गुर ज्ञानो लाए जगावै गो नानक पाणा अपने ज्यो भावै तिवै चलावै गो कानड़ा महला चौथा जप मन हर हर नाम तरावै गो जो जो जपै सोई गत पावै जो थ्रू प्रहलाद समावै गो रहाव कृपा कृपा कृपा कर हर जियो हर के कर कृपा नाम लगावै गो कर कृपा सतगुरु मिलावो मिल सतगुरु नाम ते आवै गो जन्म जन्म की हो मैं मल लागी मेर संगत मल लै जावै गो जो लोहा तरियो संकाष्ट लग शब्द गुरु हर पावै गो संगत संत मिलो सत संगत मिल संगत हर रस आवै गो बिन संगत कर्म करै अभिमानी कट पानी चीकड़ पावै गो भगत जना के हर रखवारे जन हर रस मीठ लगावै गो खिन खिन नाम दे वड्याई सतगुरु उपदेश सुमावै गो भगत जना को सदा निव रही है जन निवै ता फल गुण पावै गो जो निंदा दुष्ट करे भगतां की हर नाकस ज्यों पच जावै गो ब्रह्म कमल पुत मीन ब्यासा तप तापन पूज करावै गो जो जो भगत होए सो पूजो भरमन भरम चुकावै गो जात न जात देख मत परमो सुख जन्म पगी लग त्यावै गो जूठन जूठ पई सरी ऊपर खिन मनुआ तिल न डुलावै गो जनक जनक बैठे सिंह हसन नो मुनि धूर लै लावै गो नानक कृपा कृपा कर ठाकुर मैं दासन दास करावै गो कानड़ा महला चौथा मन गुरमत रस गुण गावै गो जेहवा एक होए लख कोटि कोट ते आवै गो राव सहस फनी जप्यो सेख न गए हर जप्या अंत न पावै गो तू अथायत अगम अगम है मत गुरमत मन ठहरावै ठहरावै गो जिन तू जप्यो तेई जननी के हर जपती हो क्यों हर जपती हो को सुख पावै गो बिदरदासी सुत छोक छोरा कृष्ण अंक गल लावै गो जल ते उपत पई है काष्ट काष्ट अंग करावै गो राम जना हर आप सवारे अपना बिरद रखावै गो हम पाथर लो लोह बट पाथर गुर संगत नाम तरावै गो ज्यो सत्संग तरियो जलाहो संत जना मन पावै गो खरे खरोए बैठत उठत मार्ग पंथ ते आवै गो सतगुर बचन बचन है सतगुर पादर मुक्त जनावै गो सासन सास सास बल पाई है निह सासन नाम ते आवै गो गुर प्रसादी हो मैं बूझै तो गुरमत नाम समावै गो सत गुरदाता जी जीन को भागहीन नहीं पावै गो फेरे वेला हाथ न आवै परसापै पछतावै गो जे को भला लोड़ै भले अपना गुर आगै टै टै पावै गो नानक दया दया कर ठाकुरु मैं सतगुर भसम लगावै गो कानड़ा महला चौथा मन हर रंग राता गावै गो पै पै त्रास पै है निर्मल गुरमत लाग लगावै गो राहो हर रंग राता सत बैरागी हर निकट तिना घर आवै गो
तिन की पंक मिले ता जीवा कर कृपा आप दिवावे गो। दुबदा लोभ लगे है प्राणी मन पूरा रंग न आवै गो, फिर उल्ट्यो जन्म होवे गुर बचनी गुर पुरख मिले रंग लावै गो। इंद्री दसे दसे फुनतावत त्रै गुणिया खिन न टिकावै गो, सतगुर पर चै वस गति आवै मोख मुक्त सो पावै गो। ओंकार एको रव रहया सब एक समय समावै गो, एको रूप एको बौरंगी सब एकत बचन चलावै गो। गुरमुख को एक पश्चाता गुरमुख होए लखावै गो, गुरमुख जाए मिले निज मैली अनहत शब्द बजावै गो। जी जंत सब सिष्टो पाई गुरमुख शोभा पावै गो, बिन गुर पेटे को मैल न पावै आए जाए दुख पावै गो। नेक जन्म विछड़े मेरे प्रीतम कर कृपा गुरु मिलावै गो, सतगुर मिलत महासुख पाया आत्मलीन बिकसावै गो। हर हर कृपा करो जगदीश जग जीवन मैं सरदा नाम लगावै गो, नानक गुरु गुरु है सतगुर मैं सतगुर शरण मिलावै गो। कन्नड़ा महला चौथा मन गुरमत चाल चलावै गो, जो मैं गड़मस दे जय तल कुंडे गुर अंकस शब्द दृढ़ावै गो। रहा चलतो चले चले दय दय दिस गुर राखे हर लेव लावै गो, सतगुर सब देर दे अंतर मुखे अमृत नाम चुआवै गो। बिशियर बिशु पर है पूर्ण गुरु गुर गरुड़ शब्द मुख पावै गो, माया पोए अंग स्नेर न आवै बिक चार चार लेव लावै गो। स्वान रूप नगर में सबला गुर खिन मै मार कढ़ावै गो, सत संतोख धर्म यान राखे हर नगरी हर गुण गावै गो। पंकज मोह निगृत है प्राणी गुर निगृत काट कढ़ावै गो, त्राहे त्राहे शरण जन आए गुर हाथी दे निकलावै गो। सुपनंतर संसार सब बाजी खेल खिलावै गो, सब बाजी खेल खिलावै गो। लाहा नाम गुर मतलै चालो हर दरगह पैदा जावै गो। हो मैं करै करावै हो मैं पाप कोयले आन जमावै गो, आया काल दुखदाई होए जो बीजै सो खबलावै गो। संतो राम नाम तन संचोले खर्च चले पत पावै गो, खाए खर्च देवै बहुतेरा हर देंदे तोट न आवै गो। राम नाम तन हर दे अंतर तन गुर सरनाई पावै गो, नानक दया दया कर दीनी दुख दालद पांज समावै गो। कानड़ा महला चौथा मन सतगुर सरन ते आवै गो, लोहा हिरन होवै संग पारस गुण पारस को हुए आवै गो। राव सतगुर महापुरख है पारस जो लागै सो फल पावै गो, ज्यो गुर उपदेश रे प्रहलादा गुर सेवक पैज रखावै गो। सतगुर बचन बचन है नीको गुर बचनी अमृत पावै गो, ज्यो अमरीक अमरा पद पाए सतगुर मुख बचन त्यावै गो। सतगुर सरन सरन मन पाई सुदा सुदा कर त्यावै गो, दयाल दीन पय है सतगुर हर मार्ग पंथ दिखावै गो। सतगुर सरन पय से थापे तिन राखन को प्रभ आवै गो, जे को सर संदै जने ऊपर फिर उल्टो तिसै लगावै गो। हर हर हर हर हर सर हुसेवै तिन दरगह मान दिवावै गो, गुरमत गुरमत गुरमत आवै हर गल मिल मेल मिलावै गो। गुरमुख नाद वेद है गुरमुख गुर परचय नाम ते आवै गो, हर हर रूप हर रूपो होवै हर जन को पूज करावै गो। साकत नर सतगुर नहीं किया ते बेमुख दे बेमुख हर सब जग का तारक लग, हर हर रूप हर रूप होवै हर जन को पूज करावै गो। साकत नर सतगुर नहीं किया ते बेमुख हर परमावै गो, लोभ लहर स्वान की संगत बिख माया क्रंग लगावै गो। राम नाम सब जग का तारक लग संगत नाम ते आवै गो, नानक राख राख प्रभ मेरै सत्संगत राख समावै गो। छका एक सतनाम श्री वाहिगुरु जीओ कानड़ा चंत महला।